0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
2: नारद जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई है, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहां जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो, अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूं। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा, नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब काम हारा, थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। ऐसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटकाए, बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए, और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके, और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजी ये तो शंभू है, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा। भोलेनाथ जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हो। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार है एकदम, और कैसे तैयार है, कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के 4-4 हाथ हैं, किसी के 10-10 पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बरातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं।

दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली, जब दास इतना सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा। तो बोले, चिंता मत करो, आ ही रहे हैं, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आ गए। दामे बोले, ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा, अब तो बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख लें। कैसे दामाद जी, नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें। नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू। डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले, दामाद जी कहाँ है? बोले, दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कहिए उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या, भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं, माता जी कौन है? अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले, सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से ना थोड़ी देंगे, अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं, आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी। चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता, बाबा जी एक प्रार्थना है, कहूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले, हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी, छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने, तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले, वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहनकर बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा, दासी को कहा, अरे जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखे होगो मैया तेने ना कभी देखेगी, ऐसो कौन सो बाबा जी आगो। बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई, बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहाँ ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए हैं। अच्छा बाबा जी, कहाँ लोगे भोजन? पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहाँ लोगे? बोले अरे मैया, तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है? अरे मैया, हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया, मैं तो बड़ी दूर से तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे, हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही, कहा बाबा आपके कहियो, कहा मांगने आयो तू?
मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली, बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो कु दे दो। तू कहेगो मोकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बोले, नहीं कराएगी? क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली, बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर? तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूर उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो? अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली, बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है के सांपन पे नाचेगो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले, नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो हूँ। मैया बोली, या ब्रज में बहुत लाला है, जा काही के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले, ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली, देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटेली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले, तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली, बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले, कब तक नहीं कराएगी? कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे, ते तब देख लूंगो। मैया बोली, मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे, कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले, अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले, नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, अपने छोरा को ब्याह तो करेगी? ब्याह करेगी, छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली, छोरा कुआरो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, बड़ी हटीली अम्मा है, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें, हम भी यही बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली, बैठो रे, मैं अपनो काम धंधो संभाल। और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मनी मन ठाकुर जी को कहते, अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा, अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो 4 दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले, हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहेगा। बोले, क्या? बोले, रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया।
जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई, आवाज बाहर गई। अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई, अरे मैया कहा कर रही है। तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहा करो, बोले रो रहे हो है तू, याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई है। मैया बोली अब कहा करे, बोले कहा करे का नजर उतारो या की, बोले कैसे नजर उतारे, बोले जा रसोई थे वो लेके आ राई नून लेके आ भीतर। मैया गई नमक लाई राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो काना कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे, ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है, बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली कहा बीमारी है, बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का, बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई, और मैया अब वा भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी, बोले मैं थोड़ी उतारूंगी, वाके नहीं तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगा वो भूत उतारे हो। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है, तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ तुमको भूत उतारने आते हैं। बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं, भूत उतारे वारो कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते। अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है, अभी लेके आए चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। वो पिराजी हो गई और खुश होती होती मैया ओ मैया बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी, बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यही तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले ले कराई काम खराब, मैं कबते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकु जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे, तेने वाको रूप देखियो है
कैसो रूप है वाको,

बोली, मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाए। अब तो कु बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो, बता। भैया बोली, मोकु तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत, दूर जाके ठाड़ी है जी। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दी, कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है, गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई, बाबा के और पास गई, और पास गई।

बोला। श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिलखिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र पंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दे, जोर से हंस दी। भैया बोली हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहा हो भसन लगे। अब मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे भविष्य बतानो आवे? मैया ना ऐसी होती है एक काम में 10 काम करना चाहती है, कोई एक आयोजन हो एक कार्यक्रम हो उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखनो। बोले वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगा। मैया बोली ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले तो ठीक है मत दो हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा रुक रुक जा रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी पर देख बाबा जरा संभाल के अपने नागन्ने ने थोड़ा संवार के रख समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले मैया, अरे यशोदा मैया तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने मैया, तो कु पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो, मैया तो कु पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो, मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे और तोर मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली बाबा मैंने तो कु काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो, अरे राजा बनेगो नाम रोशन करेगो बड़ो होगो महल बनाएगो तो वो तो याके नहीं होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले मैया तू बता तो कु तेरे निया कहा चाहिए? बोले मो को तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले 4 दिन को तेरा छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो, तो बाबा तू ही बता अब छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी वो को रोज नए नए व्यंजन खवाएगी, और बाबा बता ना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है? अरे मैया या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब? बोले मतलब मैया तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। जैसे मैया ने सुनी तो बस वही खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यो सोच रही हूँ अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वही बैठे बैठे मेरे तो 16,108, अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी? बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलू, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों?

क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है, रह रहे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यहीं रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराज

0: जेल में खाना तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़ पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार। पुलिस पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।
3: नया नजरिया विद आरजे पलक।
4: एक रील खत्म नहीं होती कि हम दूसरी देखने लगते हैं। एक नोटिफिकेशन आते ही हम अपना फोन ऑन स्पॉट चेक करते हैं। क्या एक्चुअल में हमारा माइंड हर वक्त कुछ नया मांगने लगा है? गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया। आज हम बात करेंगे द डोपामाइन ट्रैप की बी के सिस्टर्स के साथ। वेलकम मैम।
5: ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
4: ज्योति जी, आज हमारा माइंड ना हर वक्त कुछ नया देखना, सुनना या एक्सपीरियंस करना चाहता है। क्या हम इंस्टेंट स्टिमुलेशन के आदि हो गए हैं?
6: कह सकते हैं, और आज के समय में तो बिल्कुल कहा जाता है कि हम इसके आदि हो गए हैं। आज हमें तुरंत चेंजेस चाहिए। हमारी खुशी ही परमानेंट नहीं रह रही है। थोड़ी देर के बाद हम ना सिर्फ मोबाइल्स में कुछ चीज़ें देख करके, बल्कि हम रिलेशन में भी बोर हो रहे हैं। हम रिलेशन में भी एक रिलेशन से के साथ ज़्यादा टाइम तक स्पेंड नहीं करते हैं। इसी कारण से आज की डेट में लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, शादी से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कमिटमेंट है, वहाँ एक बाउंडिंग हो गई है कि हमें साथ ही रहना है। आज लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक जगह पर अपने आप के मन को टिका नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए जो है आज रिलेशंस में भी, इवन कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स से भी परेशान हो जाते हैं। आज के बच्चों को देखें तो पेरेंट्स से भी परेशान है, आज अपने भाई बहनों के साथ भी, फ्रेंड्स भी तुरंत चेंज कर रहे हैं हर एक चीज में। और ये जो चेंज है, ये कहीं ना कहीं हमें समय भी दिखा रहा है। आज आप समय भी देखें, अगर पूरा ईयर हमारा कैसे निकल जाता है, हम कहते हैं अभी तो साल आया था, अभी पूरा भी हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो वो स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि उसका रीज़न है हमारे थॉट बहुत स्पीड से चल रहे हैं, और जितने थॉट स्पीड से चलते हैं उतने हमें चेंजेस चाहिए होते हैं। हमारे जो कहीं कंसंट्रेशन पावर की आज कमी हो गई है, हमारी जो अंदर की इनर पीस आज हमारा वो कम हो गया है। कारण है कि हम उस दुनिया में भाग रहे हैं। आज किसी को भी आप देखेंगे तो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम कहाँ जा रहा है वो कहेंगे वो पता नहीं, वो हमें भी नहीं पता कि कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तन से बिजी कम है, मन से ज़्यादा बिजी है। मन जो है उनका बहुत जगह भाग रहा है, भाग रहा है। इसीलिए आज जो है खुशी भी परमानेंट या ज़्यादातर एक ही चीज़ में नहीं रह पाती है, अलग अलग चीज़ें उन्हें चेंज करके चाहिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए।

Venons, please.

जाके बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, बत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ, टाइम जा रहा है भाई तो करी रिस्टार्ट।

अगस्त किसी के लिए हॉलिडे है, किसी के लिए सेलिब्रेशन, लेकिन हमारे सोल्जर्स के लिए ये भी एक ड्यूटी का दिन है। तो इस बार सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, एक खत भी लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें दीजिए और हम आपके जज्बात हमारे देश के हीरोज तक पहुंचाएंगे। आप ये खत हमें सबमिट कर सकते हैं रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम @ रेडियो महारानी 89.6। रेडियो महारानी 89.6 FM, दिल से देश के नाम।

0: कभी कभी फोन पास नहीं होता और बिना किसी काम के भी हाथ ऑटोमेटिकली पॉकेट की तरफ चला जाता है। शोभा जी, जब फोन ना मिले और रेस्टलेसनेस होने लगे तो क्या ये सिर्फ हैबिट है या माइंड की डिपेंडेंसी?
1: ये बिल्कुल सही आपने पूछा कि आजकल के समय में हम अधिकतर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। हम पहले थोड़ा 5 मिनट देखना शुरू करते हैं, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे वो आधे घंटे में भी बदल जाता है, और कब वो कई घंटों में या कई बार तो पूरा दिन ही हमारा उसमें निकल जाता है। तो धीरे धीरे आज हम उस फ़ोन के डिपेंडेंसी बनते जा रहे हैं, और जैसे ही वो हमसे थोड़ी सी दूर भी छूटता है तो हमें उससे जो है अजीब सा महसूस होता है, रेस्टलेस महसूस होता है, हमें लगता है कि कुछ चीज़ हमसे छिन गई है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ को करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, और ऊर्जा पैदा होती है तो हमें उससे खुशी मिलती है, और जब लगातार उस पर हम बार बार उसमें हम समय देते हैं तो अधिक हमें उससे खुशी मिलती है। लेकिन जब हम उसके आदि हो जाते हैं तो वो एक सैलाब की तरह आता है, और वो हमें खुशी तो दे के जाता है, लेकिन जब हमसे वो चीज़ छूटती है तो फिर हमें लगता है कि ये दुनिया ही हमारे लिए ख़त्म हो गई है, और हम बिल्कुल कुछ करने के लायक ही नहीं है, और हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए लोग आजकल मोबाइल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी होते जा रहे हैं, और वो उनसे छूट जाता है तो लगता है कि हमारा संसार ही ख़त्म हो गया है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: आज 10 मिनट शांति से बैठना मुश्किल लगता है, लेकिन 1 घंटा स्क्रोलिंग करना बहुत इजी। ज्योति जी, क्या हम इतने स्टिमुलेशन के आदि हो गए हैं कि साइलेंस भी बोरिंग लगने लगी है?
1: एक्चुअल में वो लग बोरिंग रहा है, लेकिन कर वही रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: हम इसको कह तो बोरिंग रहे हैं, लेकिन हम उसी तरफ जा रहे हैं। आज अब देखिए, आज अगर हम किसी को बोलते हैं फैमिली में चलो, कहते नहीं आप चले जाओ, हमें घर में ही रहने दो, तो वो अकेलापन ही वो रहना चाहते हैं। एक्चुअल में वो अकेलेपन का कारण क्या है कि वो इंटरफेरेंस नहीं चाहते। हम कोई हमें किसी भी बात के लिए कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इस तरह की लाइफस्टाइल आज हमने अडॉप्ट कर ली है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं हम सबसे डिटैच होते जा रहे हैं, हम सबसे दूर होते जा रहे हैं। हमें अब लोगों के साथ बैठना ज़्यादा टफ, समय तक हमें वो बोरिंग लगने लगता है। आज जब अकेले भी होते हैं तब भी हम खुश नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम खुश हैं, क्यों? क्योंकि हम रील्स देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, उनकी इंजॉयमेंट देख रहे हैं। अब हम वहाँ कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, उनके थॉट डिफरेंट हैं। उन सबको साथ लेके चलना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। आज हम वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आज हम अकेलापन फील करते हैं। हम अकेला रहना, बोर होते हुए भी हम अकेले रह रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा इन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: हर वक्त कुछ देखते रहना जरूरी नहीं, कभी कभी माइंड को कुछ ना करने की भी जरूरत होती है। शोभा जी, अगर कोई अपना टेंशन और इनर पीस वापस पाना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहला स्टेप तो हमारे जीवन में जो है अपनी दिनचर्या के साथ साथ अपनी मनचर्या को भी सेट करना जरूरी है। दो चीज़ें हैं, एक दिनचर्या, दूसरा मनचर्या। हम लोग अपने दिनचर्या पर तो ध्यान देते हैं, सुबह कितने बजे उठना है, कौन सा काम किस समय करना है, लेकिन मनचर्या पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए दिनचर्या के साथ साथ मन में भी कोई ना कोई थॉट्स लेकर हम पूरे दिन चलें कि हमें इस समय क्या सोचना है, क्या पॉजिटिव विचार लेकर के चलना है, किस समय क्या बात सोचनी है। तो जब एक सिस्टम बनाएंगे अपने साथ तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो व्यर्थ सोचने की जो हैबिट बन चुकी है या अधिक किसी चीज़ में हम अधिक इंटरेस्ट ले लेते हैं तो बहुत देर तक उसी में ही खोए रहते हैं, तो उससे हम छूट जाएंगे और फिर हमारे अंदर एक जो वापस हमें पीस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, जो वापस अपने अंदर हैप्पीनेस चाहिए, वो हमारे अंदर आ सकती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: बीके सिस्टर्स, थैंक यू सो मच इतनी मीनिंगफुल बातें शेयर करने के लिए।
1: ओम शांति। थैंक यू।
0: दोस्तों, थोड़ा स्क्रोलिंग कम करके कभी अपने माइंड को भी साइलेंस दीजिए। हो सकता है जिस पीस को हम स्क्रीन पर ढूंढ रहे हैं वो हमें थोड़ी देर स्क्रीन से दूर जाकर मिले। मैं हूँ आरजे पलक, आपसे इजाजत लेती हूँ। फिर मिलेंगे नया नजरिया में, एक नए टॉपिक और एक नए नजरिए के साथ। तब तक बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

89.6 रेडियो महारानी कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: Watch my biggest blockbusters online anytime, anywhere on erosnow.com.
1: सलमान खान की कॉमेडीज, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए। अपने फोन या आईपैड से इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। तो भाई पहले तो ये बताइए क्या हाल चाल है आपके। आई नो हाल चाल बहुत ही बेहतर होने वाले हैं आज के दिन, बिकॉज हम लोग आ गए हैं वीकेंड में, और जब वीकेंड में आते हैं ना तो बस कुछ नहीं नजर आता, एनर्जी वैसे ही डबल हो जाती है, बिकॉज वीकेंड ना हमें ये बताने के लिए आता है कि बहुत काम कर लिया, फाइनली अब टाइम हो गया रेस्ट करने का, अपने लिए टाइम निकालने का, और हाँ जो करना चाहते हो ना वो चीज करने का। तो भाई रेडियो महारानी पर आरजेंस ले आ गई है, तो बातें तो बहुत सारी होने वाली है, एंटरटेनमेंट का डोज भी आपको डबल मिलने वाला है, साथ ही बॉलीवुड का तड़का मिलेगा, इंटरेस्टिंग बातों के साथ मिलने वाली है फिटनेस का फंडा भी। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मसाले वाले चाय की गर्मा गर्म सिप लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सुबह 7 बजे आई हूँ और आपके साथ 11 बजे तक रहने वाली हूँ, तो बातें तो बहुत सारी होने वाली है ना, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: दस रिया हिज डिजाइन्स आर टू डाई फॉर मैं ता हां
1: मलो जॉनी स्वीट स्वीट मलो
2: ये तो ही यार जदी बापी फैन
1: अच्छा
0: मैं भी स्वीट मनोत्रा वांगू बनना चाहती हूं

0: हाँ जी, बातें तो बहुत सारी करने वाला है, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि फरीदाबाद का मौसम कैसे रहने वाला है। तो देखिए, आज मौसम बहुत ही सुहाना है, फ्राइडे का दिन है और आज का मौसम रेनी और स्टॉर्मी मूड के साथ नजर आया है। यानी कि आज का जो ये मौसम है ना, ये आपको ये बता रहा है कि गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े हो ही जाए। और देखिए, टेम्परेचर की बात करूँ तो हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाले 32 डिग्री, और इसी के साथ अगर मिनिमम की बात करें 27 डिग्री है। और ना पूरा दिन बारिश के चांसेस हैं, तो अपने साथ अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिएगा। ह्यूमिडिटी भी आपको इसके साथ मिलने वाली है। और अगर मैं विंड स्पीड की बात करूँ तो विंड स्पीड 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आज आपको हवाएं मिलने वाली है। और इसी के साथ अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट अम्ब्रेला जरूर कैरी करके जाइएगा। अगर आपको लगता है ना कि आगे बहुत ज्यादा पानी है तो उस रूट से मत जाइएगा, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वह थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: 1, 2, 3.

मैं डॉक्टर ईशा वधावन हूँ, मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मैं फोर्टिस फरीदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। सो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि एज अ मदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन, तो हम लोगों की लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू बहुत लंबी होती है, बट देर आर ओनली सो मेनी डेज इन अ वीक या फिर सो मेनी आवर्स इन अ डे, तो आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं। बट हम मदर्स, जब कोई भी लेडी मदर बनती है, ट्रूली ब्रेन में स्टडीज हुई हैं कि चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग, एक्स्ट्रा लेवल की कंपैशन वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफी बार इग्नोर कर देती हैं बाकी सबको हेल्प करते करते। इग्नोर करने में इसमें आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल है। बट बहुत सिंपल और वैलिड पॉइंट ये है कि यू कैन ओनली पोर फ्रॉम व्हाट यू हैव, मतलब आप अपना कप भरेंगी पॉजिटिव थिंग्स से तो आप बाहर भी पॉजिटिविटी करेंगी। अगर आप इतनी फटीग्ड है, टायर्ड है कि आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप कुछ हेल्प बहुत इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगी अल्टीमेटली।

15 अगस्त किसी के लिए हॉलिडे है, किसी के लिए सेलिब्रेशन, लेकिन हमारे सोल्जर्स के लिए ये भी एक ड्यूटी का दिन है। तो इस बार सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, एक खत भी लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें दीजिए और हम आपके जज्बात हमारे देश के हीरोज तक पहुंचाएंगे। आप ये खत हमें सबमिट कर सकते हैं रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम @ रेडियो महारानी 89.6। रेडियो महारानी 89.6 FM, दिल से देश के नाम।

हाँ जी, तो चलिए तारीख पर बात कर ही लेते हैं। और आ गई हूँ मैं लेकर आज तारीख पर तारीख। तो देखिए, आज है 14th August और इस दिन ना सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सोशल सिक्योरिटी डे। यानी कि ये दिन हमें ये बताता है, देखिए बताता कुछ नहीं, बेसिकली ये दिन हमें आज के दिन मैसेज देता है। और मैसेज ये है, जिंदगी में सिर्फ आज की अर्निंग नहीं, कल की सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट होती है। और इसीलिए कहा जाता है रिटायरमेंट हो, डिसेबिलिटी हो या फिर फैमिली को किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़े, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का बस लोगों को डिफिकल्ट सिचुएशन में फाइनेंशियली सेफ्टी नेट देता है। और इसी के लिए आज मैं लेकर आ गई एक छोटा सा फाइनेंशियल रिमाइंडर। यानी कि जब भी आपकी सैलरी आए ना, तो ये मत सोचेगा कि सारी की सारी ही सैलरी उड़ा देनी है, ये कोई स्मार्टनेस नहीं है। बल्कि थोड़ा सा सेव कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा फ्यूचर के लिए। और हाँ, प्रोटेक्शन भी जरूरी है। और इसी के साथ आज का टेक अवे ये है, फ्यूचर को सरप्राइज मत बनाओ, प्लान बनाओ। और ये था नेशनल सोशल सिक्योरिटी डे का फंडा। तो इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हे सिनेमा लवर्स, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ हर कैप्सूल में मिलता है सिनेमा की दुनिया का एक फ्रेश अपडेट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वो बातें जो शायद आपने अभी तक मिस कर दी हैं। तो आज का कैप्सूल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इमरान हाशमी के सॉन्ग्स को हेडफोन्स लगाकर फुल फील के साथ सुना है, क्योंकि एक कल्ट क्लासिक अब अपना अगला चैप्टर लेकर वापस आ रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवारापन 2। 2007 में आई आवारापन कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, एक्शन था, इमोशंस थे, लेकिन सबसे बड़ी यूएसपी थी उसका सोल। इमरान हाशमी का शिवम पंडित एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम था लेकिन ऑडियंस से सीधा कनेक्ट कर जाता था। और ऑनेस्टली उस फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सेफ्टी से रखा हुआ है। अब लगभग 20 साल बाद शिवम पंडित फिर से लौट रहा है। आवारापन 2 का ट्रेलर फाइनली आउट हो चुका है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में वही इंटेंस इमरान हाशमी वाइब देखने को मिल रही है, एक्सप्रेशन वही, साइलेंस वही, लेकिन कहानी इस बार पहले से कहीं ज्यादा लेयर्ड और एक्शन पैक्ड लग रही है। फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल्स में है, तो कास्टिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे बॉलीवुड में सीक्वल बनाना सबसे रिस्की गेम है, क्योंकि ऑडियंस टिकट सिर्फ नई स्टोरी देखने के लिए नहीं खरीदती, वो अपनी पुरानी मेमोरीज भी साथ लेकर आती है। और आवारापन जैसी फिल्म के फैंस की एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर लग रहा है कि मेकर्स ने सिर्फ नाम कैश करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उस ओरिजिनल इमोशन को भी पकड़ने की कोशिश की है जिसने पहली फिल्म को कल्ट बनाया था। अब देखना यह है कि आवारापन 2 वही मैजिक रिक्रिएट कर पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी है। तो अगर आपने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है, एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कुछ स्टोरीज नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं, अपने इमोशंस की वजह से याद आ जाती है। मैं हूं गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: watch more, log on to www.erosnow.com.
1: हेलो हेलो जी, तो चलिए बॉलीवुड बस लेकर आ गई हूँ और आज बॉलीवुड बस में हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जॉनी लीवर का। अगर देखिए जॉनी की मैं बात करूँ ना, तो इनकी एंट्री होते ही ना पूरे सिनेमा में पूरे स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ लाफ्टर का डोज छा जाता है, हंसी सबसे ज्यादा आती है और इसीलिए शायद इनके फैंस इन्हें इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो आज अगर बात की जाए तो बॉलीवुड की लेजेंडरी कॉमेडियन जॉनी लीवर का हैप्पी वाला बर्थडे। तो अगर जॉनी की बात करें तो 300 से ज्यादा हिंदी फिल्म्स में अपनी कॉमेडी का तड़का लगा चुके हैं। तो इनकी शुरुआत आपको पता है कैसे होती है? शुरुआती दौर में ही मुंबई की सड़कों पर निकले थे पैन बेचने के लिए, और जब पैन बेचते थे वहां पर ये एक्ट्रेस की मिमिक्री करते थे, लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन करते थे और वही टैलेंट आगे चलकर इनकी पहचान बन गया। तो वही आज अंजलि ऑन एयर की तरफ से कॉमेडी किंग को हैप्पी वाला बर्थडे। आप ऐसे हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही अपने फैंस का दिल जीतते रहे और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
1: Ayo, G-Funk.

हेलो हेलो जी, तो आ गई हूँ आज का बिजनेस बस लेकर। और आज का बिजनेस वाला आइडिया ना खासकर उन लोगों के लिए है जो हमेशा ये बोलते हैं बिजनेस करना है पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो भाई देखिए, आज का आइडिया आप लोगों के लिए, आपने करना क्या, जितने भी लोकल शॉप्स है ना उनके लिए व्हाट्सएप कैटलॉग बनाना और मैनेज करने का काम है। क्योंकि आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे ऐसे नेबरहुड के बुटीक्स, बेकरीज, यहाँ तक कि सैलून है जिनके होम बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी को नजर ही नहीं आते। तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन दिखाने के लिए ना कैटलॉग्स बनानी है। तो भाई आपने करना है क्या, उनके प्रोडक्ट्स की फोटो क्लिक करनी है, व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग सेट करना है, साथ ही वीकली ऑफर स्टेटस लगाने हैं और ऑर्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है, दैट्स इट। तो भाई देखिए, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, शॉप उनकी डिजिटल दुकान है आपकी यानी कि सर्विस है, और आपने इसकी शुरुआत अपने एक दो लोकल बिजनेसमैन से कर सकते हैं मंथली सर्विसेज चार्ज की। और देखिए इसके लिए ना आपके पास लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, फोन से भी ये काम हो जाता है। तो आज की बिजनेस टिप याद रखिएगा, जहाँ किसी की प्रॉब्लम है वहीं किसी और का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो भाई आज ही जाइए अपने एरिया में, देखिए कौन सी दुकान अच्छी चल रही है, बस ऑनलाइन थोड़ी सी वीक है, वहीं से आपका क्लाइंट मिल जाएगा। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलूंगी आपसे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

इंसान तरसेगा।

हेलो हेलो जी, तो चलिए वक्त हो गया फिर से कहीं दूर जाने का। अब आप सोच रहे हैं कि दूर कहाँ जाएं, तो भाई चलिए अबू धाबी चलते हैं। अबू धाबी से एक इंटरनेशनल अपडेट लेकर आ गई हूँ जो कि हमारे ट्रेवल लवर्स को बहुत ज्यादा एक्साइट करने वाली है। अबू धाबी ने ना इंडियन टूरिस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री UAE एंट्री वीजा की लिमिटेड टाइम प्रोग्राम लॉन्च किया है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट क्या है? इम्पोर्टेंट ट्विस्ट ये है, ये सभी इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री नहीं है, बल्कि एडिबल ट्रेवल्स को पार्टिसिपेटिंग ट्रेवल पार्टनर्स के थ्रू अबू धाबी हॉलीडे पैकेज बुक करना होगा। तो भाई देखिए, जिसके अंदर आपको ना कम से कम 3 कंसेक्यूटिव नाइट्स की होटल स्टे और इंडिया से रिटर्न फ्लाइट शामिल करनी होगी यानी कि। और साथ ही अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूँ तो ये पायलट प्रोग्राम 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा और पता है इनिशियली 20,000 कॉम्प्लीमेंट्री वीजा तक सपोर्ट करेगा। अगर देखिए आप भी अबू धाबी की ट्रिप का प्लान कर रहे थे ना, तो ये ऑफर बिल्कुल आपके लिए ही है। वीजा फ्री जरूर है लेकिन कंडीशन भी ध्यान रखनी होगी। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए अपना ये ट्रिप। चलते हैं आगे, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: आगे गराज, गराज की ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उजले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती।

Hi, I am Dr. Shweta Mendiratta. मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 फरीदाबाद से आज आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रादर आई वुड से एक अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक यानी कि मेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी पर। मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसके बारे में शायद एक इंसान खुद ही नहीं जान पाता कि उसको ये प्रॉब्लम है या उसके साथ ये नेचुरल हो रहा है या ये फ्लो के साथ चलता रहता है जब तक कि उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम की बढ़ नहीं जाती है। आई फील फिजिकल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमोशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो फिजिकल और इमोशनल पार्ट है हेल्थ का वो आज की डेट में काफी हद तक कवर हो गया, बिकॉज आजकल चाहे हमारी मदर इन लॉज है या हमारे हस्बैंड्स हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एजुकेशन बीइंग पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, हम लोगों के ये सब केयर हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमने अगर किसी फीमेल को इमोशनल केयर दे दी तो शी मस्ट बी डूइंग वेल, क्योंकि हम उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए करा रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अटमोस्ट केयर टू अ फीमेल, वो फीमेल हो सकता है कि कुछ कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो जो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। शुरू में तो जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के आगे अचानक से रोने लग जाती है, तो हस्बैंड को ये लगता है कहीं उसे अपनी मम्मा की याद तो नहीं आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से घर में किसी पे भी चिल्ला देती है, तो उन्हें लगता है अच्छा इसने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज को उठा के ऐसे रख देगी या उसको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को खुद को जो फीमेल है उसको पता नहीं चलता है, तो ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये सब नॉर्मल हो रहा है, घर के लोगों को भी ये नॉर्मल लगता है। डेफिनेटली यस, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो इस तरीके से होते हैं कि वो रोल प्ले करते हैं, तो आपके ये मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैं भी पेशेंट को कहती हूँ कोई बात नहीं, बट अगर ये चीज डेली होने लगे या एक ही दिन में बार बार होने लगे कि एक औरत रोती ही जा रही है लगातार, आपने चुप कराया, आप आइसक्रीम खिलाने ले गए, आप चॉकलेट लाने ले गए, आप उसको घुमाने ले गए, उसके बावजूद भी अगर ये चीज हो रही है देन डेफिनेटली ये चीज नॉर्मल नहीं है।

आजकल हम ना सिर्फ शॉर्टकट के पीछे भागता है, सोच के जरूर देखेगा, ये तो 40 मिनट की रोड जर्नी है ना, ये फटाफट से 12 मिनट की हो जाए। नहीं नहीं, मैं गूगल मैप्स की शॉर्टकट की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। यहाँ तो भाई मैं जिसकी बात करने वाली हूँ ना, वो गाड़ी ही हवा में उड़ने वाली है। चलिए फिर उत्तराखंड चलते हैं, और उत्तराखंड के ना अल्मोड़ा के यंग इनोवेटर रवि ने एक फ्लाइंग व्हीकल बना दिया है, जिसका आर्मी हेलीपैड पर सक्सेसफुल टेस्ट भी किया गया है। और यहाँ पर रवि का क्लेम है कि ये इंडिया का पहला पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल है, जो रोड के ट्रैफिक को बाय बाय बोलकर हवा में ट्रेवल करने का आइडिया लेकर आया। तो भाई देखिए, आइडिया तो बहुत ही मजेदार है, क्या इनोवेशन की है रवि ने उत्तराखंड में बैठे हुए। मतलब कि पहाड़ों पर ही आप ऐसे आइडियाज लेकर आ सकते हो, बिकॉज पहाड़ ना आपको ऊंचा उड़ना सिखाते हैं। और भाई यहाँ पर ना एक बार जरूर सोच के देखिएगा, आज हम बोलते हैं ट्रैफिक बहुत है, लेट हो जाऊंगा, लेकिन कल शायद हम बोलेंगे रोड छोड़ो भाई, ऊपर से ही आते हैं, बिकॉज ये जो रवि की फ्लाइंग कार है ना, ये हमें ट्रैफिक फ्री कर देगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी टेक्नोलॉजी टेस्टिंग स्टेट में है, लेकिन आइडिया एकदम फ्यूचर वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, ये इनोवेशन किसी बड़े फॉरेनर लैब में नहीं किया गया, बल्कि उत्तराखंड के एक यंग इंडियन इनोवेटर से आ रहा है। तो और क्या ही चाहिए, हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप भी इस फ्लाइंग कार में ट्रेवल करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ उत्तराखंड साथ में मिलके ट्रेवल करेंगे, और फटाफट से बुकिंग करा लेते हैं। और बुकिंग कराने के लिए आपको बताया ना कहाँ जाना है, आपको आना है रेडियो महारानी की इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, और फिर देखते हैं कि हम पहाड़ों तक पहुँचते हैं या नहीं। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

किराने की दुकान पर अगर सिर्फ दाल चावल नहीं बल्कि पूरे परिवार की कहानी भी मिल जाए तो समझ जाइए मामला है फैमिली किराना स्टोर 2 का। सिनेमा का कैप्सूल में आज बात उस फैमिली की जहां गजानंद की किराने की दुकान है और दुकान के साथ साथ चल रहा है फैमिली ड्रामा का फुल टाइम बिजनेस। श्रीकांत वर्मा की ये कहानी बिल्कुल मिडिल क्लास मोहल्ले वाली फील देती है जहाँ खुशी भी कलेक्टिव होती है और टेंशन भी, मतलब घर में किसी एक की प्रॉब्लम हो पूरा परिवार वहाँ खड़ा होता है। तो बात करूँ अगर फैमिली किराना स्टोर की जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली और

0: के मोहल्ले की एवरीडे लाइफ को लेकर बनी हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। कहानी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी लाइफ है जिसे देखकर हम बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल हमारे मोहल्ले में होता है। और हाँ, सीजन 2 की शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है, तो गजानन की दुकान पर शटर अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन कस्टमर्स की एक्साइटमेंट फुल ओपनिंग तक पहुंच गई है। तो अगर आपने गुल्लक वाली सिंप्लिसिटी, टीवीएफ वाला ह्यूमर और मोहल्ले वाली रिलेटेबिलिटी पसंद है तो भाई अपने किराने की लिस्ट संभाल कर रखिए, गजानन की दुकान फिर लगने वाली है। तो ये था सिनेमा का कैप्सूल।
1: ओ जन्नती कुड़ी, ओ जन्नती कुड़ी।

गर्मी तू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

हेलो हेलो जी। तो चलिए भाई, वक्त हो गया है सोशल स्यापा को। और आज का सोशल स्यापा ना वाकई स्यापा लेकर आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता था ये जो आंटियां मोहल्ले में चुगली करती है, ये टैलेंटेड नहीं होती, ये सिर्फ में टाइम पास करती है? यही गलत फहमी ना आज मैं दूर करने आई हूँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोलंबिया में एक आंटी ने इसी को बिजनेस बना दिया है। तो देखा, अब हुआ ना अफसोस, जिन आंटियों को ना हम इतना कोसा करते थे कि आंटी आपके पास कोई काम नहीं है। देखिए भाई, उन्होंने अपने इसी काम को ना एक्चुअल में काम बना लिया और अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया। तो देखिए, 67 इयर्स ओल्ड मिरियम नाम की इस विमेन ने ना अपने नेबरहुड के सारे सीक्रेट्स गॉसिप कलेक्ट करके ना लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। और उनका कहना है कि इसी काम से उन्होंने अब तक 2 घर खरीद लिए हैं। और वो पता है खुद को ना बहुत ही प्राउड के साथ बताती है कि मैं प्रोफेशनल चुगलीखोर हूँ, यानी कि मैं ना गॉसिप कर सकती हूँ और मुझ जैसे गॉसिप ना शायद ही मोहल्ले में कोई दे सकता है। अब आप जरूर सोचेगा कि हमारे यहाँ जिन आंटियों को हम बोलते हैं ना कि आंटी यार अपना काम करो, क्यों किसी की जिंदगी में ताक झाक कर रहे हो, अब आप उन्हें जाके बताइए कि आंटी आपकी टैलेंट से ना आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और यार, अगर आपको कोई मौका मिले ना तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी चुगली करके ना अच्छा खासा पैसा कमाइए। क्यों 9 to 5 करना है आपको, इतनी जद्दोजहद करनी है लाइफ में? इस तरह की चुगली कीजिए, गॉसिप कीजिए, पैसा कमाइए और हाँ, अपनी लाइफ को ना और अपनी लाइफ में मजे कीजिए। लेकिन ये तो था देखिए भाई मजाक के लिए। लेकिन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कहानी हमें क्या लेसन देती है। तो भाई देखिए, आज की स्टोरी हमें ये लेसन देती है, गॉसिप से पैसा मिले ना मिले, लेकिन अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है ना, किसी के साथ शेयर मत कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी ये जो कहानी है ना वो कब जाकर कहां पर ब्रॉडकास्ट हो रही हो। और इसी के साथ ही आज का सोशल स्यापा, और ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपके लिए लेकर आती रहूंगी। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

लेकिन हमारे सोल्जर्स के लिए ये भी एक ड्यूटी का दिन है, तो इस बार सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, एक खत भी लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें दीजिए और हम आपके जज्बात हमारे देश के हीरोज तक पहुंचाएंगे। आप ये खत हमें सबमिट कर सकते हैं रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम @RadioMaharani89.6। रेडियो महारानी 89.6 FM, दिल से देश के नाम।

हेलो हेलो जी। तो देखिए, वैसे में जब मैं आती हूँ ना तो बहुत सारे साइबर स्कैम लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ डिजिटल अरेस्ट में आए एक नए ट्विस्ट की। तो देखिए, यहाँ पर जो अब स्कैमर्स है ना, वो अब सिर्फ पुलिस या फिर सीबीआई बनकर कॉल करने के साथ साथ आपको फेक लीगल नोटिस और वीडियो कॉल का इस्तेमाल करके भी फंसा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कहते हैं कि आपका नंबर किसी क्राइम में यूज हुआ है, और यानी कि सिंपल सा फंडा ये है, ये आपको इस तरह का यकीन दिलाते हैं कि आपके नाम से कोई इलीगल ट्रांजैक्शन मिली है, जिसकी वजह से जो है आपको अरेस्ट करके रखना पड़ेगा और आपके अकाउंट को फ्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं रीसेंट केस की बात करूँ ना, तो एक रीसेंट केस आया है जहाँ पर विक्टिम को ना लीगल एक्शन और बेल के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रेशर किया गया। फिर क्या था, फिर वो इस स्कैम का शिकार हो गया। तो मैं आज आपको यही बताने आई हूँ कि इंडिया में ना एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, और वो ये है कि इंडिया में डिजिटल अरेस्ट नाम के जैसी कोई भी लीगल प्रोसेस होता ही नहीं है। तो अगर कोई भी आपको ऑफिसर बनकर बोलता है कि कैमरा ऑन करो, फोन मत काटो और पैसे ट्रांसफर कर दो, तो भाई फोन बिल्कुल काट दीजिएगा, कैमरा भी ऑन मत कीजिएगा, और हाँ, तुरंत जाकर करा दीजिएगा कंप्लेंट। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताने आई थी, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

लो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।

but no, please.

हॉलिडे है, किसी के लिए सेलिब्रेशन, लेकिन हमारे सोल्जर्स के लिए ये भी एक ड्यूटी का दिन है। तो इस बार सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, एक खत भी लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें दीजिए और हम आपके जज्बात हमारे देश के हीरोज तक पहुंचाएंगे। आप ये खत हमें सबमिट कर सकते हैं रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम @RadioMaharani89.6। रेडियो महारानी 89.6 FM, दिल से देश के नाम।

0: तो चलिए फिर डू यू नो से पहुंच जाते हैं सीधा डिड यू नो पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिड यू नो पर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको पता है जिस रोड पर हम डेली चलते हैं, जिस रोड को हम डेली देखते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता होती। देखा है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ना, इसका आइडिया जितना मॉडर्न लगता है, इसका कनेक्शन एशियंट रोम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, पोम्पी जैसे जितने भी एशियंट रोमन सिटीज है ना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेड स्टोन ब्लॉक लगाए जाते थे, जिसके थ्रू वहाँ के जो लोग हैं वो रोड क्रॉस कर सकते थे बिना गंदे पानी या फिर कीचड़ में पैर रखे हुए। और देखिए, स्टोन के बीच में इतना गैप रखा जाता था कि जितने भी वहाँ पर कार्ट है, जितने भी हॉर्सेज है, वो आराम से निकल जाए। लेकिन अगर आज की मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करूँ ना, जो कि बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मॉडर्न वर्जन आया है, ये ब्रिटेन में 1949 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब रोड क्रॉस करने का जुगाड़ काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन थोड़ा सा तरीका मॉडर्न हो गया। तो देखा ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। और इसी के साथ इसी तरह की डिड यू नो वाले सेगमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो गया मेरे यहाँ से जाने का। मिलेंगे फिर इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।
1: पकोड़ी मेनू कहती

मैं डॉक्टर गार्गी अग्रवाल हूँ. आई एम अ सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी एट अमृता हॉस्पिटल सेक्टर 88 फरीदाबाद. तो एज मोस्टली लोगों को पता है दैट अमृता हॉस्पिटल इज अ लार्ज फैसिलिटी, इज एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल एज सच ऑल्सो. एंड यहाँ पर हम कई ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी केसेस और गायनी के लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं और कई हाई रिस्क और कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी सक्सेसफुली पूरे किए हैं. डिलीवरी से डर फीमेल्स में बिल्कुल एक्सपेक्टेड और एक नॉर्मल फिनोमिना है. जैसे हम सब जानते हैं कि डिलीवरी भी एक मदर के लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस, एक न्यू एक्सपीरियंस होता है. और किसी भी एक रूटीन लाइफ में भी कोई भी नया एक्सपीरियंस या बहुत बड़ा काम करने पर हमेशा हम सब में भी जो है एक डर की फीलिंग सबसे ज्यादा उभर के सामने आती है. और जब फीमेल की लाइफ में इतना बड़ा चेंज और परिवर्तन हो रहा होता है तो ये डर काफी नॉर्मल है. तो डिलीवरी से डर जो है इस चीज को समझना कि ये भी एक नेचुरल फीलिंग है और इसको ये सोचना कि इससे घबराने की बजाय आप अपने अगर मिथ्स क्लियर रखेंगे, अपने दिमाग में क्लैरिटी रखेंगे तो जरूर जो है, और ऑफकोर्स सेफ्टी ऑप्शंस अपने सारे साथ रखेंगे तो जो हमारा सेफ एक एंड पॉइंट है दैट इज सेफ एंड कंफर्टेबल डिलीवरी वो फीमेल्स अचीव कर पाएंगी कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन. तो डेफिनेटली कई बार हम ये देखते हैं फीमेल्स में कि नॉर्मल डिलीवरी से डर लगता है या उनके केसेस में कई बार नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल भी नहीं होती है, बट फैमिली का प्रेशर देखते हुए उनको ये लगता है कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रही हैं तो कुछ कमजोरी हो रही है या उनकी तरफ से कुछ चीजें गलत हो रही हैं. तो फीमेल्स को ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन इन दोनों का एक ही मकसद है, एक ही एंड पॉइंट है, एक ही आउटकम है, वो है सेफ मदर और सेफ बेबी. तो इन दोनों को कंपटीशन की तरह देखने की बजाय ये देखना ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में किस पेशेंट के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा सही है. और इसी की हेल्प के लिए आपके डॉक्टर्स और मरीज के जो क्लिनिशियंस होते हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, वो हेल्प करते हैं. तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह एक तरीके से मेडिकल एंटिटीज हैं और पेशेंट की हेल्थ, बेबी की हेल्थ और उस समय की सिचुएशन को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन का डिसीजन लिया जाता है. तो ये चीज केस टू केस और पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल रहती है. डॉक्टर कॉलिंग.

हाँ जी, तो हो जाए। हाँ जी, फिर से आ गई हूँ मैं लेकर दिमाग की बत्ती जलाने वाला सेगमेंट। और वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस। तो भाई चलिए, आपके दिमाग की ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी को पता है, जब मैं दिमाग की एक्सरसाइज कराने के लिए आती हूँ तो एक सेगमेंट लेकर आती हूँ, फरीदाबाद की पहेली। तो भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली का, और आज की पहेली है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह हूँ जिसे 18वीं सदी में बनाया गया था। अभी यहाँ राजा महाराजा रहते थे, और आज भी लोग मेरी खूबसूरती, आर्किटेक्चर और इतिहास को देखने दूर दूर से आते हैं। मेरा नाम एक वीर राजा के नाम से जुड़ा हुआ है। तो भाई देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है, तो इस हिंट को जरूर पहचानिए। और तो फटाफट से मिलते हैं थोड़ी ही देर में, इस पहेली के जवाब का इंतजार खत्म होगा। लेकिन आपको पता है ना, आपको क्या करना है, फटाफट से जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज हमें भेजना है, देखता है कि आप फरीदाबाद को कितना जानते हैं। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, प्यासो ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: कुछ हटके।
1: अरे यार डैडी, आप बैक टू बैक कॉल कर रहे हो यार। मैं करता हूँ ना, बोला ना ड्राइव कर रहा हूँ।
2: अरे हो ही नहीं सकता।
3: अरे मत यार, आप
2: नहीं
3: हो जाए।
2: नेक्स्ट टाइम
3: मैं नहीं पिया था, मैंने सब

ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।
1: और भाई रामफल सुना दे, क्या हालचाल?
2: बस बढ़िया यार, कुछ नहीं, 12वीं के पेपर में फेल हो गया अबकी बार। हाँ, बस यहाँ बैठा था, टाइम पास कर रहा था और बीड़ी फूक रहा था।
1: सही है, बीड़ी लगा ले, टाइम पास हो जाएगा मेरा भी।
2: क्या करना है,
1: ला जल गई, ला मेरे को दे दे।
2: यार तू भी दिमाग खराब करता है, खरीद के पी लिया कर कभी।
1: अरे तो एक बीड़ी में गरीब हो जाएगा क्या तू, एक बीड़ी के पीछे मर रहा है।
2: अरे बीड़ी छोड़, उधर देख
1: भाई, वो अमीर घर की बड़ी लड़की है, तू देहरा देसी कमार, तेरे काबू थोड़ी आएगी, तो सब ले रहा है।
2: हाँ, ए फौजी बॉय, दुर्रा देख दमाग का। फिर अब
3: राम राम मैडम जी, कैसे हो?
4: हट सुगले से,
3: करवा ले बेइज्जती, आगे स्वागत जा ले लो।
2: हाँ, ए फौजी बॉय, सॉरी, इट्स अ डॉग।

0: अगर ऑफिस के लिए निकल ही गए हो तो अब ये सुनते जाओ। तो आज की अपडेट खास आपके लिए, और अपडेट ये है कि फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ अगर जाने वाले हो ना, तो जितने भी कम्यूटर्स आज मुझे सुन रहे हैं वहाँ पर जाने वाले, तो आज आपको बदरपुर बॉर्डर, NHPC चौक और मथुरा रोड पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। बिकॉज आप सभी को पता है कि भाई ऑफिस वाला टाइम है, पीक आर है, और ऐसे में ना ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हो ही जाता है। और इसके साथ ही खास चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर सरिता विहार के फ्लाईओवर से जा रहे हो ना, तो वहाँ पर ना रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको आज ट्रैफिक मिलेगा। और तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाइएगा, और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो रूट को जरूर डाइवर्ट कर लीजिए। और बस साथ ही ये कहना चाहती हूँ कि ट्रैवल को एंजॉय कीजिएगा, ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा, बिकॉज गुस्सा करने से ना बीपी हाई हो जाता है, और आपको पता ही है कि का गुस्सा ट्रैफिक को नहीं हटा सकता है। तो ऐसे में एंजॉय कीजिए अंजलि ऑन एयर, और एंजॉय कीजिए इस प्यारे ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: ओए, कल आए क्यों नहीं थे?
2: अरे भाई यार, घर पे बोला दोस्तों के साथ जाना है, तो बोलते यारी दोस्ती होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि और कोई चीज इम्पोर्टेंट ही ना लगे। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, और अपने ऊपर कैसे ध्यान देते हैं।

बहुत सारी मैं बातें यहाँ पर लेकर आती हूँ, लेकिन जब मैं खुशखबरी लेकर आती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगता है। वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम पर अंजलि ऑन एयर। तो भाई फरीदाबाद वाले हो, आपके लिए ना एक बहुत पॉजिटिव अपडेट मैं लेकर आई हूँ, लेकिन अभी इस प्लान में थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये प्लान अगर अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चला ना तो फ्यूचर में दिल्ली टू फरीदाबाद के बीच का जो सफर है वो और भी ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट हो सकता है। तो भाई नमो भारत को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही है एंड ऑफिशियल रूट्स और स्टेशन लोकेशंस पर काम भी किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से फरीदाबाद के कई सेक्टरों को बेटर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, यानी कि जितने भी डेली कम्यूटर्स का ट्रेवल टाइम है वो अब कम हो सकता है, खासकर जो लोग डेली फरीदाबाद टू दिल्ली जाते हैं। अब सोचिए अगर आप दिल्ली जा रहे हो ना और मेट्रो से जा रहे हो तो आपको पूरा घूम कर जाना पड़ता है, आपको 2.5 घंटे 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। और वहीं सेम अगर आपको गुरुग्राम नोएडा जाने वाला हो ना तो लिटरली इतना टाइम लगता है कि इतनी देर में आप ऋषिकेश पहुंच जाए, 6 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी आने जाने में। तो अगर ये कनेक्टिविटी आ गई तो देखिए कितना फास्ट आपका काम हो जाना है, कितना कन्वीनियंट हो जानी है सारी चीजें। तो भाई स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ सफर नहीं बल्कि हमारे ट्रैफिक और पॉल्यूशन दोनों को भी कम करने में हेल्प करता है। तो ये थी फरीदाबाद की आज अच्छी खबर और ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं लेकर आऊंगी, लेके तब तक के लिए इंतजार कीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक का।

0: लो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए

Venons, please.

One wine, please.

किसी को बुलाना कितना आसान है ना, मतलब अब तो खरीदा भी जा सकता है, पर क्या ऐसी दुनिया में तुम मुझे याद रखोगे हमेशा के लिए?

हमारे रास्ते अब अलग हैं। मैंने तुम्हें भुला दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे भूल जाओ, ताकि जब हम दोबारा मिले तो अजनबी हो।

अगस्त किसी के लिए हॉलिडे है, किसी के लिए सेलिब्रेशन, लेकिन हमारे सोल्जर्स के लिए ये भी एक ड्यूटी का दिन है। तो इस बार सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, एक खत भी लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें दीजिए और हम आपके जज्बात हमारे देश के हीरोज तक पहुंचाएंगे। आप ये खत हमें सबमिट कर सकते हैं रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम @ रेडियो महारानी 89.6। रेडियो महारानी 89.6 FM, दिल से देश के नाम।

0: बातें तो बहुत सारी की हैं और इन्हीं बातों के बीच में मुझे याद आ गया है कि टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो भाई बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं और थैंक यू सो मच, आप फरीदाबाद की पहेली को इतना प्यार दे रहे हैं। डेली आते हैं, डेली अपने जवाब देते हैं, कुछ सही होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते, लेकिन आप फरीदाबाद को बहुत प्यार करते हो, फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हो, ये सेगमेंट हमें ये बताता है। तो चलिए भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो जो मैंने पहेली पूछी थी ना आज, मैंने एक हिंट भी दिया था, लेकिन पहेली थोड़ी सी टफ थी। तो चलिए देखते हैं किसने सही जवाब दिया है। तो मैं पहले इनका जवाब आपको सुनाती हूँ।
1: हाय अंजलि, मैं हूँ दीक्षा फरीदाबाद से, और आपकी आज की पहेली का सही जवाब है राजन हार सिंह मल्लवकर।
0: बिल्कुल सही पकड़े हैं दीक्षा, इतना सही जवाब, और ये हमें ये बता दे कि आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हो। बिकॉज ये अगर मैं इस पहेली की बात करूँ ना तो थोड़ा सा टफ था, ऐतिहासिक थी थोड़ी सी पहेली, लेकिन क्या गैस किया है भाई, तुम्हें मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। नहीं, 1 करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन हाँ ये जरूर बताता है कि फरीदाबाद को प्यार बहुत करते हो दिल से, क्योंकि आपने ये जगह बिल्कुल सही गैस की है, और इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से मिलेंगे एक और नई पहेली के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

मैं डॉक्टर ईशा वधावन हूँ, मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मैं फोर्टिस फरीदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। सो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि एज अ मदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन, तो हम लोगों की लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू बहुत लंबी होती है, बट देर आर ओनली सो मेनी डेज इन अ वीक या फिर सो मेनी आवर्स इन अ डे, तो आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं। बट हम मदर्स, जब कोई भी लेडी मदर बनती है, ट्रूली ब्रेन में स्टडीज हुई हैं कि चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग, एक्स्ट्रा लेवल की कंपैशन वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफी बार इग्नोर कर देती हैं, बाकी सबको हेल्प करते करते। इग्नोर करने में इसमें आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल है। बट बहुत सिंपल और वैलिड पॉइंट ये है कि यू कैन ओनली पोर फ्रॉम व्हाट यू हैव, मतलब आप अपना कप भरेंगी पॉजिटिव थिंग्स से तो आप बाहर भी पॉजिटिविटी करेंगी। अगर आप इतनी फटीग्ड हैं, टायर्ड हैं कि आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप कुछ हेल्प बहुत इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगी अल्टीमेटली।

मानसून का मजा खराब कर देता है। तो भाई देखिए, मानसून की अगर फीलिंग लेनी है ना अच्छे से, तो अपने हाथ में ना गर्मा गर्म भुट्टे हमेशा रखिएगा, क्योंकि इन भुट्टों में ना स्वाद तो होता ही है, लेकिन इन भुट्टों में ना एक और चीज होती है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ये कहती है, इनके अकॉर्डिंग भुट्टे में होता है फाइबर, रेसिस्टेंट स्टार्च और साथ ही पोटेशियम, मैग्नीशियम और बी विटामिन। तो भाई इतने सारे न्यूट्रिशन आपको एक भुट्टे में मिल जाते हैं, और क्या ही चाहिए। और फाइबर की अगर मैं बात करूँ तो हमारी डाइजेशन को सपोर्ट करता है, और अगर येलो कोन की मैं बात करूँ, खासकर अपने जो देसी भुट्टे होते हैं, इनके अंदर आपको एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी और ब्लूटिंग की प्रॉब्लम है ना, उनको हमेशा एसिडिटी और ब्लूटिंग की टेंडेंसी रहती है, तो भाई उनके लिए एक और ऑप्शन है, आप भुट्टा बॉइल्ड या फिर लाइटली स्टीम्ड फॉर्म में ले सकते हैं। तो भाई ये देखिए, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर ना अब ट्विस्ट ये है, हम ना हमेशा ना देसी चीजों को थोड़ा सा विदेशी बना देते हैं, उसके ऊपर बटर, चीज और ना जाने पेरी पेरी मसाला, कितने सारे मसाले लगा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सही न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो इसको आप ऐसे ही खाइए जैसे आप खाते हैं, सो दैट कि आप ज्यादा फ्लेवर्स के पीछे ना भागे और एक्चुअल नेचुरल चीज को अच्छे से एंजॉय कर सके। और इसी के साथ दिस मॉनसून होने वाले है, भुट्टे वाला मॉनसून, और इसी के साथ एंजॉय कीजिए आज का दिन गर्मा गर्म भुट्टे के साथ, और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

उतरने वाला है। कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना, यानी तीन लोग एक रिलेशनशिप और प्रॉब्लम इतनी कि शायद थेरेपिस्ट भी बोले भाई मुझे इन्वॉल्व मत करो। अब फिल्म अब अगस्त में ओटीटी पर रिलीज हो रही है। जिन लोगों ने थिएटर में इस लव ट्रायंगल को मिस कर दिया था, अब उनके लिए रिमोट ही आपका टिकट काउंटर है। और सबसे मजेदार बात, आजकल रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो ना हो, बॉलीवुड को लव ट्रायंगल पर अभी भी भरोसा है। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए, क्योंकि कॉकटेल 2 अब आपके स्क्रीन पर रिलेशनशिप की नई सर्विंग लेकर आने वाला है।

ले आ गया फिर तेरे दरवाजे के बरसात से बचने का और बहाना न मिला। बाहें तेरी घर से लगी और इस दिल को कोई ठिकाना न मिला।

0: सब एक और देवदास के
1: हाँ जी, बातें बहुत सारी कर ली आज, तो चलिए अंजलि ऑन एयर का ये सफर ना यहीं पे खत्म कर देते हैं, आज के लिए खत्म करते हैं, बिकॉज वीकेंड में आ गया ना। अब मैं आपसे मिलूंगी मंडे सेम टाइम सेम प्लेस, बहुत सारी बातें करने वाली हूँ आपके साथ। सुबह सुबह ट्रैफिक से लेकर वेदर सबकी अपडेट आपको देती हूँ, और आज भी दी थी बॉलीवुड से लेकर फरीदाबाद की अपडेट आप तक पहुँच जाती हूँ। तो भाई फ्राइडे को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, वीकेंड में आ गए हैं, अपने फैमिली के साथ अपने लव वंस के साथ टाइम जरूर स्पेंड कीजिएगा। और देखिए जब वीकेंड आते हैं ना तो ना सारी टेंशन साइड हो जाती है, फिर संडे तक ना बस फ्री होकर हम लोग रिलैक्स होकर हम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ये दो दिन ना जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, बस यही वाले स्पिरिट अपने साथ रखिएगा। और वैसे भी ये वीकेंड ना खास होने वाला है, बिकॉज हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं सैटरडे। तो बस यही कहना चाहती हूँ, अपने देश के नाम अपने नाम इस वीकेंड को अच्छे से डेडिकेट कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा खूब। मिलेंगे मंडे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड
5: ओनली विद आरजे मॉर्निंग
6: फिल्मी फ्लेवर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं कैसे स्टार की जो लगभग 10 साल बाद स्क्रीन पे वापसी करने वाला है। बात करता हूँ यहाँ पे इमरान की, लगभग 10 साल बाद लीड हीरो के रूप में वापसी कर रहे हैं। उनकी कमबैक फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम होने वाली है, जिसकी शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और इस वक्त पोस्ट प्रोडक्शन में है। फिल्म एक ग्रोन अप रोमांटिक कॉमेडी है जो इमरान के करंट लाइफ फेस से रेजोनेट करती है और को स्टार यहाँ पे गुरफतेह होंगे। डायरेक्टर निखिल अडवाणी इस कहानी को लेकर के आ रहे हैं। रिलीजिंग की अगर बात की जाए तो 26 के एंड में इसको रिलीज किया जाने वाला है, उम्मीद है शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म। 10 साल बाद इमरान की वापसी होने वाली है लीडिंग किरदार के साथ, तो फैंस को ज़्यादा उम्मीदें हैं, इमरान को मेकर्स को भी उम्मीदें बहुत हैं कि कहानी धमाल मचा दे कुछ इस हिसाब से। पोस्ट प्रोडक्शन शूटिंग और पूरे करेक्टर्स डायलॉग्स रखे गए हैं कि इमरान की कमबैक बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। अब रहेगा इंतज़ार कि ये बढ़िया क्या तरीका होने वाला है, किस बढ़िया तरीके से इसको लाने वाले हैं कहानी को, रहेगा इंतज़ार। बाकी ऐसी भी चर्चाएँ करता रहूँगा, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।

हाय सिनेमा लवर्स, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ हर कैप्सूल में मिलता है सिनेमा की दुनिया का एक फ्रेश अपडेट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वो बातें जो शायद आपने अभी तक मिस कर दी हैं। तो आज का कैप्सूल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इमरान हाशमी के सॉन्ग्स को हेडफोन्स लगाकर फुल फील के साथ सुना है, क्योंकि एक कल्ट क्लासिक अब अपना अगला चैप्टर लेकर वापस आ रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवारापन 2। 2007 में आई आवारा कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, एक्शन था, इमोशंस थे, लेकिन सबसे बड़ी यूएसपी थी उसका सोल। इमरान हाशमी का शिवम पंडित एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम था लेकिन ऑडियंस से सीधा कनेक्ट कर जाता था। और ऑनेस्टली उस फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सेफ्टी से रखा हुआ है। अब लगभग 20 साल बाद शिवम पंडित फिर से लौट रहा है। आवारापन 2 का ट्रेलर फाइनली आउट हो चुका है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में वही इंटेंस इमरान हाशमी वाइब देखने को मिल रही है, एक्सप्रेशन वही, साइलेंस वही, लेकिन कहानी इस बार पहले से कहीं ज्यादा लेयर्ड और एक्शन पैक्ड लग रही है। फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल्स में है, तो कास्टिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे बॉलीवुड में सीक्वल बनाना सबसे रिस्की गेम है, क्योंकि ऑडियंस टिकट सिर्फ नई स्टोरी देखने के लिए नहीं खरीदती, वो अपनी पुरानी मेमोरीज भी साथ लेकर आती है। और आवारापन जैसी फिल्म के फैंस की एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर लग रहा है कि मेकर्स ने सिर्फ नाम कैश करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उस ओरिजिनल इमोशन को भी पकड़ने की कोशिश की है जिसने पहली फिल्म को कल्ट बनाया था। अब देखना यह है कि आवारापन 2 वही मैजिक रिक्रिएट कर पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी है। तो अगर आपने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा

रखा है एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कुछ स्टोरीज नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं अपने इमोशंस की वजह से याद आ जाती है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: अंजलि।
1: तो चलिए फिर डू यू नो से पहुंच जाते हैं सीधा डिड यू नो पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिड यू नो पर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको पता है जिस रोड पर हम डेली चलते हैं, जिस रोड को हम डेली देखते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता होगी। देखा है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ना, इसका आइडिया जितना मॉडर्न लगता है, इसका कनेक्शन एशियंट रोम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए पोम्पी जैसे जितने भी एशियंट रोमन सिटीज है ना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेलस्टोन ब्लॉक लगाए जाते थे, जिसके थ्रू वहाँ के जो लोग हैं वो रोड क्रॉस कर सकते थे बिना गंदे पानी या फिर कीचड़ में पैर रखे हुए। और देखिए स्टोन के बीच में इतना गैप रखा जाता था कि जितने भी वहाँ पर कार्ट है, जितने भी हॉर्सेज है, वो आराम से निकल जाए। लेकिन अगर आज की मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करूँ ना, जो कि बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मॉडर्न वर्जन आया है, ये ब्रिटेन में 1949 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब रोड क्रॉस करने का जुगाड़ काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन थोड़ा सा तरीका मॉडर्न हो गया। तो देखा ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट आया कहां से। और इसी के साथ इसी तरह की डिड यू नो वाले सेगमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो गया मेरे यहाँ से जाने का। मिलेंगे फिर इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं दोस्तों सिनेमा के गलियारे से मुसाफिर कैफे के बारे में, जो मुसाफिर कैफे को लोगों ने बहुत पसंद किया, अनाउंस किया जा चुका। लीड कास्ट में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंचो और महिमा मकवाना वापस आने वाले। सीजन वन का एंड इमोशनल क्लिफ हैंगर पर हुआ। सीजन टू चंद्र सुधा प्रीति की अधूरी लव स्टोरी को आगे बढ़ाएगा। एक टीजर के साथ इसकी अनाउंसमेंट की गई जिसमें लिखा गया अधूरी मोहब्बत की कहानी को पूरा करने ये मुसाफिर वापस लौटेंगे। ओटी प्लेटफॉर्म पर एग्जैक्ट रिलीज डेट तो अभी अनाउंस नहीं की गई, इसको फिर से लाया जा रहा है। 2027 टारगेट है, अर्ली स्टेज पर इसको रिलीज किया जाएगा। मुसाफिर कैफे की जितनी फैन फॉलोइंग रही, ये लव स्टोरी का अगला सीजन देखने के फैंस बहुत ज्यादा उत्सुक है जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई।

0: लो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

0: वेरिफिकेशन करना है।
1: सर अकाउंट बंद हो जाएगा, डर का रिमोट दबाकर वॉलेट पर हमला चला।

Venons, please.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ पे अब हम बात करते हैं दोस्तों सोशल मीडिया के बाद अब ओटी प्लेटफॉर्म की, जहाँ पर कुछ ओटीसीज जिनका आप लुत्फ उठा सकते। मैं वापस आऊंगा इम्तियाज की 1947 पार्टीशन लव स्टोरी, साथ ही ऑपरेशन सफेद सागर द हाईएस्ट एयरफोर्स मिशन, कारगिल वॉर के दाम, आईएएफ के हिस्टोरिक एयर कैंपेन पर बेस्ड कहानी, स्टिकी लव के ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी जो अजनबियों की कहानी जो लव स्टोरी में बदलती नजर आई। इन सभी कहानियों को आप लुत्फ उठा सकते हैं ओटी प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ एमटीवी हसल सीजन 8 भी ओटी प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, इसका भी लुत्फ उठाइए, वीकेंड को डबल एंटरटेनिंग बनाइए। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे

ये कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में किस पेशेंट के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा सही है, और इसी की हेल्प के लिए आपके डॉक्टर्स और मरीज के जो क्लिनिशियंस होते हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह एक तरीके से मेडिकल एंटिटीज हैं, और पेशेंट की हेल्थ, बेबी की हेल्थ और उस समय की सिचुएशन को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। तो ये चीज केस टू केस और पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल रहती है। डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फॉर मी फ्लेवर। यहाँ पे दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सिनेमा के कल्याण से आवारा बन चुके ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर रिलीज को लोगों ने बहुत पसंद किया और आज थिएटर्स में कहानी रिलीज की जा रही है 2007 की कल्ट क्लासिक आवारापन का सीक्वल, जिसमें इमरान फिर से शिवम पंडित के रूप में लौट रहे हैं। कास्ट में दिशा बजरानी फीमेल लीड में होंगी और शबाना आजमी नेगेटिव किरदार निभाते नजर आएंगे। नितिन कक्कड़ इस कहानी के प्रोड्यूस करते नजर आए। ट्रेलर में इमोशनल एक्शन रिवेंज लव का मिक्स दिखाया गया। शिवम की पास्ट पेन और नए संघर्ष की झलक मिलती है ट्रेलर देखते ही, और अब थिएटर्स में कहीं देखने के बाद कितने रिव्यूज मिलने वाले, कितना प्यार मिलने वाला है, इसका रहेगा इंतजार। जो वीकेंड के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट आवारापन को कितना प्यार मिला, कितने व्यूज, कितनी रेटिंग, कितने स्टार्स है, इसका रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

तो चलिए फिर डू यू नो से पहुंच जाते हैं सीधा डिड यू नो पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिड यू नो पर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको पता है जिस रोड पर हम डेली चलते हैं, जिस रोड को हम डेली देखते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता होती। देखा है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ना, इसका आइडिया जितना मॉडर्न लगता है, इसका कनेक्शन एशियंट रोम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, पोम्पी जैसे जितने भी एशियंट रोमन सिटीज है ना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेस्टोन ब्लॉक लगाए जाते थे, जिसके थ्रू वहाँ के जो लोग हैं वो रोड क्रॉस कर सकते थे बिना गंदे पानी या फिर कीचड़ में पैर रखे हुए। और देखिए, स्टोन के बीच में इतना गैप रखा जाता था कि जितने भी वहाँ पर कार्ट है, जितने भी हॉर्सेज है, वो आराम से निकल जाए। लेकिन अगर आज की मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करूँ ना, जो कि बहुत ही मॉडर्न हो गया था, मतलब रोड क्रॉस करने का जुगाड़ कल लेकर आती रहूंगी। लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो गया मेरा यहाँ से जाने का। मिलेंगे फिर इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। बेस्ट ऑफ अंजलि।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं इस वक्त सिनेमा के कैलेंडर में चर्चा करेंगे उस आवाज की जिसमें एनर्जी भी है, एटीट्यूड भी और सुरों की वो रेंज भी जो हर जेनर को अपना आप बना लेती है। रोमांटिक मेलोडी हो या फिर पार्टी एंथम या फिर रॉक और इमोशनल ट्रैक, इस सिंगर की आवाज हर मूड को एक अलग जान दे देती है। 90s के एंड से लेकर आज तक बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगिंग को अपनी पावरफुल वॉइस देने वाले सिंगर सुनिधि चौहान की बात करें, जो आज अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करें तो हैप्पी वाला बर्थडे सुनिधि चौहान को। और इनके बारे में बहुत ही चर्चाएं आज मैं करने वाला हूँ सिनेमा के कलंदर में। सुनाऊंगा कुछ धमाकेदार सिंगर

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो, यानी कि फिल्में यू फ्लेवर। यहां हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की, जहां सुनिधि का सिंगिंग जर्नी बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गई थी। बचपन में उन्होंने अपनी स्टेज परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी और टीवी के सिंगिंग प्लेटफॉर्म ने उन्हें वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया। सिर्फ 13 साल की एज में उन्होंने फिल्म शस्त्र के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। इसके बाद धीरे धीरे उनकी आवाज बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स की फेवरेट वॉइसेस में शामिल हो गई। और फिर आया वो दौर जब सुनिधि की पावरफुल वॉइस बॉलीवुड के हाई एनर्जी सॉन्ग्स की पहचान बन गई। महबूब मेरे आजा नचले, बीड़ी, क्रेजी कियारे, कमली, दरखास्त जैसे गाने जहां सुनिधि आवाज देती नजर आई। और खास बात यह रही कि सुनिधि ने सिर्फ डांस नंबर्स ही नहीं बल्कि सुरफ और इमोशनल सॉन्ग्स में भी अपनी वर्सटैलिटी दिखाई। उनकी वॉइस का टेक्सचर इतना डिस्टिंक्टिव है कि पहले कुछ सेकंड्स ही लिसनर पहचान लेते हैं। उनके बारे में ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन रेडियो महाराज।

0: कॉलिंग।
1: Hi, I am Dr. Shweta Mendiratta. मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 फरीदाबाद से आज आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रादर आई वुड से एक अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक यानी कि मेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी पर। मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसके बारे में शायद एक इंसान खुद ही नहीं जान पाता कि उसको ये प्रॉब्लम है या उसके साथ ये नेचुरल हो रहा है या ये फ्लो के साथ चलता रहता है जब तक कि उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम की बढ़ नहीं जाती है। आई फील फिजिकल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमोशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो फिजिकल और इमोशनल पार्ट है हेल्थ का वो आज की डेट में काफी हद तक कवर हो गया, बिकॉज आजकल चाहे हमारी मदर इन लॉज है या हमारे हस्बैंड्स हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एजुकेशन बीइंग पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, हम लोगों के ये सब केयर हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमने अगर किसी फीमेल को इमोशनल केयर दे दी तो शी मस्ट बी डूइंग वेल, क्योंकि हम उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए करा रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अटमोस्ट केयर टू अ फीमेल, वो फीमेल हो सकता है कि कुछ कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो जो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। शुरू में तो जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के आगे अचानक से रोने लग जाती है, तो हस्बैंड को ये लगता है कहीं उसे अपनी मम्मा की याद तो नहीं आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से घर में किसी पे भी चिल्ला देती है तो उन्हें लगता है अच्छा इसने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज को उठा के ऐसे रख देगी या उसको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को खुद को जो फीमेल है उसको पता नहीं चलता है, तो ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये सब नॉर्मल हो रहा है, घर के लोगों को भी ये नॉर्मल लगता है। डेफिनेटली यस, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो इस तरीके से होते हैं कि वो रोल प्ले करते हैं, तो आपके ये मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैं भी पेशेंट को कहती हूँ कोई बात नहीं, बट अगर ये चीज डेली होने लगे या एक ही दिन में बार बार होने लगे कि एक औरत रोती ही जा रही है लगातार, आपने चुप कराया, आप आइसक्रीम खिलाने ले गए, आप चॉकलेट लाने ले गए, आप उसको घुमाने ले गए, उसके बावजूद भी अगर ये चीज हो रही है देन डेफिनेटली ये चीज नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा के कलंजम में सुनिधि चौहान के बारे में, जहां सुनिधि ने अपने करियर में कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और नॉमिनेशंस हासिल किए और हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, पंजाबी जैसे कई लैंग्वेजेस में प्लेबैक सिंगिंग की। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वर्सेटाइलिटी। एक तरफ जहां बात करें एक्टिफाइंग ट्रैक तो दूसरी तरफ एक सॉफ्ट रोमांटिक मेलोडी, दोनों को अपनी आवाज से कंप्लीटली डिफरेंट फील देना। आज सुनिधि चौहान इंडियन प्लेबैक सिंगिंग की उन पावरफुल वॉइसेस में शामिल हैं जिन्होंने जनरेशन ऑफ लिसनर्स को एंटरटेन किया। ऐसी चर्चाएं चलती रहेंगी लेकिन आज नहीं, आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन सेम टाइम सेम जगह। तब तो सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हट गया।

सेना। मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।
1: अरे अरे ए, ए, ए, ए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

फ्राइडे आ ही गया। और वैसे सच सच बताना, फ्राइडे आते ही ना वीकेंड के प्लान से ज्यादा एक्साइटमेंट किस बात की होती है। मेरी तो एक ही विश होती है कि बस संडे को कोई मुझे लेट तक सोने दे। मतलब लोग बोलते हैं ना कि वीकेंड पे लॉन्ग ड्राइव, वीकेंड पे शॉपिंग, वीकेंड पे ब्रंच, और मैं वीकेंड पे ब्लैंकेट, तकिया और मस्त

सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।

but no, please.

अगस्त किसी के लिए हॉलिडे है, किसी के लिए सेलिब्रेशन, लेकिन हमारे सोल्जर्स के लिए ये भी एक ड्यूटी का दिन है। तो इस बार सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, एक खत भी लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें दीजिए और हम आपके जज्बात हमारे देश के हीरोज तक पहुंचाएंगे। आप ये खत हमें सबमिट कर सकते हैं रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम @ रेडियो महारानी 89.6। रेडियो महारानी 89.6 FM, दिल से देश के नाम।

0: पर्स।
1: अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी ने आपको बोला है कि यार तू कितना गूफी है, और आप एक सेकंड के लिए सोचने लगे कि ये तारीफ कर रहा है या बेइज्जती? तो रिलैक्स गाइस, आजकल जेन ज़ी डिक्शनरी में ना गूफी का मतलब होता है वो पर्सन जो थोड़ा फनी हो, थोड़ी पागलों वाली हरकत करता हो और बिना वजह लोगों को हंसा देता हो, जैसे कि मैं। मतलब जो रील बनाते बनाते खुद ही गिर जाए फिर उठकर बोले कि एक और टेक करते हैं यार, है ना। या जो सीरियस फोटो खिंचवाने जाए और लास्ट मोमेंट पर अजीब सा फेस बना दे। सच कहूँ मुझे लगता है ना कि हर फ्रेंड सर्कल में एक गूफी फ्रेंड जरूर होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि हमारे ग्रुप में कौन है, तो एक बार जरा खुद को चेक कर लेना, कहीं आप ही वो पर्सन ना हो। और एक और सीक्रेट बात बताऊं, लाइफ में ना थोड़ा गूफी होना भी जरूरी है। हर वक्त मैच्योर बनने की एक्टिंग करते करते इंसान थक जाता है। कभी कभी बस खुल के हंस लेना और थोड़ी सी मस्ती कर लेना भी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चलिए अब गाना एंजॉय कीजिए, और गाने के बाद मिलते हैं मीम चेक में, जहां बात होगी उस इंटरव्यू की जिसे देखकर मुझे भी ये लगा था कि ये मेरा ही वर्जन है। 89.6 रेडियो महारानी।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

आज सुबह ही मेरी चाय ढंग से खत्म भी नहीं हुई थी और मैं आदत से मजबूर तो हूँ ही। चाय पीते पीते मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया और रील स्क्रॉल करने लगी और पहली ही रील आई कि एक रिपोर्टर एक पर्सन से पूछ रही है कि आप खाली टाइम में क्या करते हो, और उस पर्सन ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया कि मैं तो सो जाता हूँ। और इस लाइन के बाद ही तुरंत मैंने बोला कि अरे ये तो मैं हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि मुझे संडे को सिर्फ सोना पसंद है। उसके बाद रिपोर्टर ने पूछा कि अच्छा फुल टाइम में क्या करते हो, उसने बोला कि नहा धोकर खा पी कर फिर सो जाता हूँ। और उसके बाद जब उसने पूछा कि अभी यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि अभी तो सो के उठा हूँ। बस भाई उसके बाद ना मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही प्रीमियम वर्जन है। सच बताना हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसा फेज जरूर आता है जहाँ ना हम कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़ा ब्रेक मांगते हैं, और संडे को तो मम्मी वैसे ही बोलती हैं कि उठ जाओ और कितना सोओगे, तो हमें बस एक ही डायलॉग याद आता है कि बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसीलिए ये मीम हमें बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगी, क्योंकि इसमें कोई भी एक्टर नहीं था, क्योंकि इस रील में सबने खुद को ही इमेजिन किया। चलिए अब एक मस्त सा गाना सुनते हैं और गाने के बाद मिलते हैं 4 लोग क्या कहेंगे में। आज बात करेंगे उस लेजेंडरी इंसान की जिसे हम सब बचपन से जानते हैं, शर्मा जी का बेटा। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

अच्छा एक बात बताओ, बचपन में ना मुझे लगा था शर्मा जी का बेटा शर्मा जी से ज्यादा मेरी मम्मी का फेवरेट बन गया है। मैं 10th क्लास में 85% लेकर आई थी और मम्मी ने तुरंत बोला कि अच्छे हैं, लेकिन शर्मा जी के बेटे के 95% आए थे। मैं संडे को थोड़ी देर एक्स्ट्रा सो गई तो शर्मा जी का बेटा सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई कर लेता है, और अगर मैं फोन लेकर बैठ जाऊं तो बस यही सुनने को मिलता है कि शर्मा जी का बेटा तो पूरे दिन फोन को हाथ भी नहीं लगाता, सिर्फ पढ़ाई करता है। मतलब सीरियसली मुझे बचपन में लगा था कि ये शर्मा जी का बेटा है या मेरा गूगल, कि मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास क्यों है भाई। फिर धीरे धीरे समझ आया कि प्रॉब्लम शर्मा जी का बेटा नहीं था, प्रॉब्लम कंपैरिजन थी। हम अपनी लाइफ की स्टोरी किसी और के रिपोर्ट कार्ड से कंपेयर करने लगते हैं, और कंपैरिजन की ना सबसे फनी बात पता है क्या है, जिस शर्मा जी के बेटे से हमें कंपेयर किया जाता है, हो सकता है उसके घर में उसकी कंपैरिजन किसी वर्मा जी की बेटी से हो रही हो। इसलिए आज अगर कोई बोले ना कि शर्मा जी के बेटे को देखो, तो प्यार से बोल देना कि देखूंगी, बिल्कुल देखूंगी, लेकिन पहले मुझे उसका एड्रेस भेज दो। बचपन से नाम सुन रही हूँ लेकिन आज तक मिल नहीं पाया मुझे, क्योंकि कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ता, बस अपनी खुशियाँ छोटी लगने लगती हैं। तो अपनी रेस है भाई, अपनी स्पीड से दौड़ना है ना। बाकी शर्मा जी के बेटे को शर्मा जी ही संभाल लेंगे। चलिए अब एक प्यारा सा गाना सुनते हैं, और गाने के बाद मिलते हैं तब पॉपकॉर्न अपडेट में। गुड न्यूज उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉकटेल 2 थिएटर्स में मिस कर दी थी। बताऊंगी क्या है इसका राज। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

पतंजलि। तो चलिए फिर डू यू नो से पहुंच जाते हैं सीधा डिड यू नो पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिड यू नो पर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको पता है जिस रोड पर हम डेली चलते हैं, जिस रोड को हम डेली देखते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता होती। देखा है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ना, इसका आइडिया जितना मॉडर्न लगता है, इसका कनेक्शन एशियंट रोम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, पोम्पे जैसे जितने भी एशियंट रोमन सिटीज है ना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेस स्टोन ब्लॉक लगाए जाते थे, जिसके थ्रू वहाँ के जो लोग हैं वो रोड क्रॉस कर सकते थे बिना गंदे पानी या फिर कीचड़ में पैर रखे हुए। और देखिए, स्टोन के बीच में इतना गैप रखा जाता था कि जितने भी वहाँ पर कार्ट है, जितने भी हॉर्सेज है, वो आराम से निकल जाए। लेकिन अगर आज की मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करूँ ना, जो कि बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मॉडर्न वर्जन आया है, ये ब्रिटेन में 1949 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब रोड क्रॉस करने का जुगाड़ काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन थोड़ा सा तरीका मॉडर्न हो गया। तो देखा ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट आया कहां से। और इसी के साथ इसी तरह की डिड यू नो वाले सेगमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो गया मेरे यहाँ से जाने का। मिलेंगे फिर इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: चुल
1: हैप्पी आवर्स।
2: एक कन्फेशन करना है, हम में से ना बहुत लोग थिएटर में फिल्म देखने का प्लान तो बना लेते हैं, फिर बोलते हैं कि यार OTT पे आ जाए ना, फिर देख लेंगे। तो गुड न्यूज है उन सभी के लिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकटेल 2 नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। मतलब अगर आप थिएटर्स में मिस कर गए थे तो इंडिपेंडेंस डे लॉन्ग वीकेंड का एंटरटेनमेंट आपके पास खुद चलकर आ गया है। और इस बार फिल्म में नजर आ रहे हैं शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंधाना। और इस सीक्वल को भी डायरेक्ट किया है होमी अडजानिया ने, जिन्होंने 2012 वाली ओरिजिनल कॉकटेल भी डायरेक्ट की थी। यानी नई फेसेस, नया लव ट्रायंगल, लेकिन कॉकटेल वाली रिलेशनशिप और दोस्ती वाली फील को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जो हर फिल्म के लिए बोलते हैं कि OTT पे आएगी तब देखेंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लगता है इस बार आपकी विश पूरी होने वाली है। चलिए अब एक जबरदस्त गाने एंजॉय कीजिए और गाने के बाद मिलते हैं स्टाइल स्टूडियो में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

गर्ल्स, एक बात बताओ कि फैशन का मतलब क्या है? कंफर्ट को सेक्रिफाइस करना या कॉन्फिडेंस कैरी करना? क्योंकि ऑनेस्टली अगर पूरा दिन आउटफिट ही एडजस्ट करना पड़ रहा है तो फैशन जीत गया है और हम हार चुके हैं। और आज ही मैंने एक पोस्ट देखी जो उसमें श्रद्धा कपूर एक एड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोल रही थी कि सुंदर दिखने के लिए ना अनकंफर्टेबल होना जरूरी नहीं है। और पता है ये बात मुझे सच में हिट कर गई, क्योंकि कितनी बार हम सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में वो पहन लेते हैं जो हमें सूट ही नहीं करता। फिर पूरा दिन या स्लीव्स ठीक करो, हाँ हील संभालो, या आउटफिट क्रीज हो गया। अरे भाई, आउटफिट पहनना है या प्रोजेक्ट हैंडल करना है? मेरा मानना ये है कि फैशन का असली रूल सिंपल है, आप कपड़े कैरी मत करो, कपड़े आपको कैरी करें। ट्रेंड आएंगे, ट्रेंड जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को मिरर में देख के बोलो कि हाँ यार आज तो मैं अच्छी लग रही हूँ, बस वही तो बेस्ट आउटफिट है। चलिए अब स्टाइल की बातें बहुत हो गई, अब टाइम हो चला है फरीदाबाद की गलियों में निकलने का, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

फरीदाबाद में रहकर अगर आपको लगता है कि घूमने के लिए ना हर बार फरीदाबाद से बाहर जाना पड़ेगा, तो एक बार ये जगह जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बताती हूँ आपको एक ऐसी पीसफुल जगह के बारे में जो शायद आपने पहले ना कभी सुनी हो। बड़कल लेक और अंखिर विलेज के पास अरावली की पहाड़ियों के बीच है एक परसौन टेम्पल, जिसे महर्षि पराशर तपोभूमि भी कहा जाता है। माना जाता है कि महर्षि पराशर ने ना यहीं तपस्या की थी और यहाँ आपको मंदिर के साथ साथ ग्रीनरी, पेड़ पौधों से घिरा शांत माहौल और एक पवित्र कुंड देखने को मिलेगा, जिसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। और इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में ना छोटा सा झरना भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत खूबसूरत है। मतलब अगर आपको कभी सिटी की भीड़ भाड़ से ब्रेक चाहिए और थोड़ा नेचर के बीच टाइम स्पेंड करना है, तो परसौन टेम्पल को अपने लिस्ट में जरूर रखिए। और अगर एंट्री की बात करी जाए तो एंट्री भी फ्री है। तो अगली बार फरीदाबाद में कुछ अलग एक्सप्लोर करने का मन हो, एक बार यहाँ घूम के आइएगा। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रिया नहीं टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

0: हाँ जी नीरज किवें लग्या लाइक से कमेंट करके जरूर दस्सियो ते साडे नवे नवे गाने सुनने लई जी थैंक यू जी चैनल जरूर सबसक्राइब कर लियो
1: थैंक यू सो मच चलो जाने से पहले एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। हम कभी ना कभी किसी ना किसी की बातों की ना अनपेड एम्प्लॉय बन जाते हैं। कोई कुछ बोलता है और ओवर टाइम हमारा दिमाग करने लगता है। और अभी ही मैंने एक लाइन पढ़ी कि दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। और पता है इसी लाइन से मुझे ये चीज समझ में आई कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उसने हमें ऐसा क्यों बोला, प्रॉब्लम ये है कि हमने उसकी बात को अपने दिल पे इतना ले लिया कि हम खुद ही अपना मूड खराब कर बैठे हैं। लेकिन सच बताऊं जिंदगी उसी दिन से इजी लगने लगेगी जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि हर किसी को खुश रखना आपकी जॉब प्रोफाइल में नहीं है। तो इसीलिए दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करो और खुद की खुशियों पे ध्यान दो। मैं हूँ आज पलक, शो चल रहा था दी हैप्पी आवर्स, मिलते हैं मंडे। तब तक मस्त रहिए, हंसते रहिए और याद रखिए, जो लोग आपको समझते हैं ना उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती और जो नहीं समझते उनके लिए एक्सप्लेनेशन कभी काफी नहीं होती। बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। रेडियो महारानी 89.6 से आरजे पलक साइनिंग ऑफ।

अंजलि। तो चलिए फिर डू यू नो से पहुंच जाते हैं सीधा डिड यू नो पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिड यू नो पर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको पता है जिस रोड पर हम डेली चलते हैं, जिस रोड को हम डेली देखते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता होती। देखा है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ना, इसका आइडिया जितना मॉडर्न लगता है, इसका कनेक्शन एशियंट रोम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, पोम्पी जैसे जितने भी एशियंट रोमन सिटीज है ना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेस्टोन ब्लॉक लगाए जाते थे, जिसके थ्रू वहाँ के जो लोग हैं वो रोड क्रॉस कर सकते थे बिना गंदे पानी या फिर कीचड़ में पैर रखे हुए। और देखिए, स्टोन के बीच में इतना गैप रखा जाता था कि जितने भी वहाँ पर कार्ट है, जितने भी हॉर्सेज है, वो आराम से निकल जाए। लेकिन अगर आज की मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करूँ ना, जो कि बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मॉडर्न वर्जन आया है, ये ब्रिटेन में 1949 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब रोड क्रॉस करने का जुगाड़ काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन थोड़ा सा तरीका मॉडर्न हो गया। तो देखा ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट आया कहां से। और इसी के साथ इसी तरह की डिड यू नो वाले सेगमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो गया मेरा यहाँ से जाने का। मिलेंगे फिर इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

save life. पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुआ है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: I hate water wasting रे, जा के टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है। महारानी सबके देश।
1: रब शाम को चाहिए।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज तो मौसम भी अच्छा हो गया, अब कल की चिंता हो रही होगी कि कल पतंग कैसे उड़ाई जाएगी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल आरजे गौरव इन द हाउस। एंड कल पतंग उड़ाने के लिए आपको बता दूं, मौसम फिर भी ठीक ठाक रहने वाला है। स्वागत है आप सभी का। आज तो फ्राइडे है ब्रो, और फ्राइडे के साथ साथ एक वीडियो आई है। वीडियो कुछ ऐसी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग घूमने निकले पड़े हैं, पहाड़ों पर पहुंच गए हैं फिर से। तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। एंड हाँ, आज पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया था दिन में। आपने भी नोटिस करा होगा ये चीज़, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ अब, वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखो, बारिश जैसी होती ना, उसके बाद लगता है ट्रैफिक JAM, जाम, हिंदी वाला जाम, मतलब ठीक है ट्रैफिक जाम लगता है, मगर लोग अपना सिविक सेंस क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि क्या होता है, देखो एक सिंगल लेन में चल रहे होते हैं, फिर एक होशियार ड्राइवर वो रॉन्ग वे ले जाता है और फिर वो जाम को डबल कर देता है, और फिर उसके बाद अपनी गलती नहीं मानता, फिर वो दूसरी गाड़ी के बीच में गाड़ी घुसाने की कोशिश करता है। ये आप लोगों ने भी फेस किया होगा अपनी लाइफ में, हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में फेस किया है। और कुछ लोग तो इतने होशियार होते हैं, गाड़ी के काले शीशे करवा लेते हैं, अंदर से एक हूटर बजा लेते हैं, और फिर उसके बाद पता नहीं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। पता क्यों नहीं होती? मेरे को एक रीज़न पता है, क्योंकि ये ना एक सर्टेन रेडियस के अंदर गाड़ी चलाते हैं। ये चलाते हैं 1-2 किलोमीटर अपने घर से दूर, बस उससे ज़्यादा दूर लेके नहीं जाएंगे। ये है ऑनलाइन वाले बदमाश। चलिए खैर, इन सब चीज़ों के बारे में बातें होगी, मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना 89.6 पर हस्ती रहे तू।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: उपवास हैं।
1: आई नो ऐसा गाना नहीं चलाना चाहिए, मगर क्या करे, मौसम ही कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया और ये गाना चलाना ही पड़ गया मुझे, क्योंकि देखो वॉस फ्राइडे है ना ब्रो।
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
1: एंड गौरव बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इन सब हूलिगनिज्म को, ऐसे कहते हैं ना, हूलिगनिज्म ही तो कहते हैं। चलिए खैर, अभी स्वागत है आप सभी का, रेडियो का गौरव स्वागत करता है 89.6 पर, प्रोग्राम चल रहा है 4896। एंड अभी मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसी चीज़ की जो कि वायरल हो रही है, और वो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, पता है क्यों? क्योंकि भीड़ अनएक्सपेक्टेडली डबल नहीं ट्रिपल नहीं 4 times हो गई है, और इतनी ज़्यादा भीड़ एक्सपेक्टेड ही नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाएगी। एक्चुअली मैं क्या, देखो कल छुट्टी है लोगों की, और लोगों ने एचआर से बहाने बना दिए कि चलो मैडम सर हम लोग छुट्टी पे हैं, हमारी तबीयत ख़राब है, ये हुआ है। फिर उनको पता लगा कि उनके एचआर खुद ही छुट्टी पर हैं, और सब लोग मिलकर पहुंच गए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड में ये पड़ता है। एग्जैक्ट जगह लोकेशन मुझे नहीं मालूम, बट हाँ वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में मैंने रील्स बहुत सारी देखी है, एंड ये अभी बिल्कुल ब्लॉसमिंग मौसम है उसके लिए। तो सब लोग पहुँच गए वहाँ पर, और इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई कि गेट बंद करने पड़े। और सिर्फ वही नहीं, पहाड़ों की और भी रील्स आ रही है जहाँ पर सब लोग सोच के गए हुए हैं कि चलो लॉन्ग वीकेंड है, हम लोग घूमने निकल पड़ते हैं, पर उनको ये बताया जाए कि लॉन्ग वीकेंड नहीं है, सिर्फ सैटरडे की तो छुट्टी है, संडे की तो वैसे भी छुट्टी मिलती है, अब आप फ्राइडे की छुट्टी लेकर निकले पड़े होंगे तो फिर वो बात ही अलग है। चलिए अभी

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: से दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो कहाँ चली?

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

आज जब बारिश हुई उससे पहले वाला जो मौसम हुआ वो था मौसम देखने लायक। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और आरजे गौरव सुनने लायक यानी कि आप लोगों के लिए खूब सारे गाने लेकर आ गया हूँ मैं। एंड आज जो दिन का मौसम था वो बड़ा ही औसम था। मौसम विभाग ने कल ही बता दिया था, मैंने भी कल ही आपको बता दिया था कि बारिश तो होगी ही होगी, बट अभी बारिश के बारे में बात नहीं करने आया हूँ मैं बात करने आया हूँ बारिश के aftermaths की। क्योंकि जैसी बारिश होती है ना फिर उसके बाद लोग अपनी सिविक सेंस भूल जाते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि कोई ना कोई होशियार होता है जो रॉन्ग साइड गाड़ी ले आता है अपनी, पता नहीं उनको किस बात की जल्दी है, पता नहीं कहाँ जाना है इतनी जल्दी निकल के। और पता है ये लोग ना काम में कभी जल्दी नहीं दिखाते, ये हमेशा सड़क पर ही जल्दबाजी दिखाते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें लोगों के सिविक सेंस की, तो उनकी वजह से ही, मतलब हम जैसे लोगों की वजह से, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, हम लोगों की वजह से ही नालियाँ जाम होती है। आपने क्या कभी चिप्स का पैकेट खा के रोड पे नहीं फेंका कि कोई नहीं देख रहा चलो फेंक देते हैं? क्या आपने कभी कोई पन्नी रोड पे नहीं फेंकी? अगर नहीं फेंकी तो वेल एंड गुड है, बट अगर फेंकी है तो आप भी मेरी तरह ही हैं, क्योंकि मैंने अननोइंगली बहुत बार ऐसा किया है, गिर गया हाथ से फिर मैंने वापस उठाया भी नहीं उसको, ईगो क्लैश हो जाता है ना कभी कभार, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरी तरफ से। और मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कूड़ा मत उठाइए बट फैलाइए भी मत, क्योंकि यही पन्नियां नालियां जाम करती हैं और फिर उसके बाद वाटर लॉगिंग हर जगह दिखाई देती है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना इस सावन के मौसम को देखते हुए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है। अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन,

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक

0: कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
1: I like it, dude.
2: Awesome. East Punjab.

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: का इनका गाना था ये, और उसके साथ कौन सा, दिल बरा
1: रेडियो का गौरव आरजे गौरव।
0: यो गाइस, आरजे गौरव इज बैक विद अनदर सॉन्ग, और ये मिक्स मैशअप चलाया था मैंने आप लोगों के लिए रेडियो महारानी पर। 5:51, 4 घंटे के लिए आप सभी के साथ आता हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा खत्म होने वाला है, बट अभी मैं बात करना चाहता हूँ फरीदाबाद की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं, वो है लोगों के अंदर सिविक सेंस की कमी। अभी बात करूंगा मैं ट्रैफिक के बारे में, क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग अभी ऑफिस से घर जा रहे होंगे, आप लोग सड़क पर हो सकता है आप ट्रैफिक में फंसे हो। जी हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप अगर ट्रैफिक में फंसे और जबरदस्ती बेवजह हॉर्न दबाए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो आगे खड़ा है उसके आगे भी कोई ना कोई खड़ा होगा, उसके आगे भी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी लगा के खड़ा हो गया होगा। एंड यू नो व्हाट, सड़क पर अगर हम लोग बात करें लोकल मार्केट्स की, जैसे आपके पर्टिकुलर सेक्टर की मार्केट होगी, तो वहाँ पर ना कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी कर जाते हैं, और फिर वो छोटी छोटी गलियों में भी जाम लग जाता है। और फिर हम लोग अगर बात करें बड़ी मार्केट्स की, जैसे NID1 है, तो उसमें तो गाड़ी ले जाना ऐसा लगता है मुझे पाप है, क्योंकि अगर उसमें आप लोग गाड़ी ले गए गलती से, आप लोग अगर गाड़ी ले गए तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, गाड़ी निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये है जी सिविक सेंस की कमी, कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि गाड़ी कहाँ लगानी है। एंड फिर उसके बाद कुछ दुकानदारों ने, आप सभी को पता है, अतिक्रमण करके रोड तक अपनी दुकान लगा रखी है जस्ट बिकॉज ऑफ कमिंग राखी, और ये 15 अगस्त की वजह से भी लोगों ने दुकानें आगे बढ़ा रखी है, तो इनके ऊपर भी कोई एक्शन तो होना ही चाहिए। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग एंजॉय करते रहिए, आप सभी के लिए गाना गले मिट्टी मिट्टी बोल, सुनिए इस गाने को 89.6 पर।

सिनेमा लवर्स, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ हर कैप्सूल में मिलता है सिनेमा की दुनिया का एक फ्रेश अपडेट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वो बातें जो शायद आपने अभी तक मिस कर दी हैं। तो आज का कैप्सूल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इमरान हाशमी के सॉन्ग्स को हेडफोन्स लगाकर फुल फील के साथ सुना है, क्योंकि एक कल्ट क्लासिक अब अपना अगला चैप्टर लेकर वापस आ रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवारापन 2। 2007 में आई आवारापन कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, एक्शन था, इमोशंस थे, लेकिन सबसे बड़ी यूएसपी थी उसका सोल। इमरान हाशमी का शिवम पंडित एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम था लेकिन ऑडियंस से सीधा कनेक्ट कर जाता था। और ऑनेस्टली उस फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सेफ्टी से रखा हुआ है। अब लगभग 20 साल बाद शिवम पंडित फिर से लौट रहा है। आवारापन 2 का ट्रेलर फाइनली आउट हो चुका है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में वही इंटेंस इमरान हाशमी वाइब देखने को मिल रही है, एक्सप्रेशंस वही, साइलेंस वही, लेकिन कहानी इस बार पहले से कहीं ज्यादा लेयर्ड और एक्शन पैक्ड लग रही है। फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल्स में है, तो कास्टिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे बॉलीवुड में सीक्वल बनाना सबसे रिस्की गेम है, क्योंकि ऑडियंस टिकट सिर्फ नई स्टोरी देखने के लिए नहीं खरीदती, वो अपनी पुरानी मेमोरीज भी साथ लेकर आती है। और आवारापन जैसी फिल्म के फैंस की एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर लग रहा है कि मेकर्स ने सिर्फ नाम कैश करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उस ओरिजिनल इमोशन को भी पकड़ने की कोशिश की है जिसने पहली फिल्म को कल्ट बनाया था। अब देखना यह है कि आवारापन 2 वही मैजिक रिक्रिएट कर पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी है। तो अगर आपने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है, एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कुछ स्टोरीज नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं, अपने

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके
3: जिन मनुष्यों को तुम तानों से बचा रहा है, कहीं अधिक पापी हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पाप धरती के सबसे बड़े तालाब को जन्म देंगे, जिसके जागते ही संपूर्ण मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी।
4: मैं धूम्रपान का आदि हूँ, भोले को भांग चढ़ाता हूँ, प्रसाद में चढ़ाई भांग को फिर मैं ही लेके जाता हूँ, फिर यार तुम हूँ ऐसा माहौल बनाता हूँ, चिलम में भर के मालिक हूँ मैं।

0: चाहे वो कर सकता हूँ। सब छोड़ के सारे बुरे कर्म, लो मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करे हम सब श्री कृष्ण के अवतार का, सब मिलकर हम निर्माण करें नव सतयुग से समाज का, जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो, हर मानव में मानवता हो ना मानवता दिखावा हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मेरा मन कर रहा है गाना गाने का, और वो गाना ये वाला तो नहीं था, जरा जरा बहकता है। मेरा मन था गाना गाने का, है माझा तेरा तेज।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। कैसे हो आप सब? अब मांझे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि है मांझा तेरा तेज, प्लास्टिक का मांझा, चाइनीज मांझा, कांच वाला मांझा भी होता है पता आपको, और इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो चिड़िया उड़ रही होती है ना, सोचो उनको नहीं दिखाई देगा ये मांझा, उनके पंखों पर लग सकता है, उनके पंख कट सकते हैं, वो हमेशा के लिए अपाहिज हो सकते हैं। अब जो बाइकर्स होते हैं ना, जो बाइक चला रहे होते हैं, तो उन्होंने सिर्फ हेलमेट पहना होता है, गले पे कुछ नहीं पहना होता। तो अभी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें किसी ना किसी बाइकर के गले पे निशान पड़ गया है, कट लग गया है मांझे की वजह से। एंड अभी मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ ये प्लास्टिक का मांझा या फिर ये तेज़ धार वाला मांझा प्लीज़ यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे हर साल कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है। भले ही देखो छोटे मोटे कट्स पड़े, और काफ़ी बार ये जानलेवा भी साबित होता है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे वाले मांझे को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। और देखो सद्दी से पतंग उड़ा लो, जो वाइट वाला होता है, सद्दी कहते हैं ना उसे, मुझे तो बचपन से यही याद है सद्दी कहते हैं, तो उससे जैसे कन्ने बांधते हैं, तो उसी से आप लोग पतंग उड़ाइए। क्या पतंग काटनी एक दूसरे की, और बस उड़ाते जाओ, और खूब ऊँची उड़ाने के बाद आप डोर तोड़ दो और उड़ने दो उसे। चलिए बस यही बोलना चाहता था कि मांझा सही तरह से इस्तेमाल कीजिए, कोई तेज़ धार वाला मांझा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उससे किसी भी इंसान को दिक्कत हो सकती है। और अगर आप लोग बाइक चला रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल अपने गर्दन पे कपड़ा ज़रूर बांध के चलाइएगा, क्योंकि मांझा कहीं से भी आ सकता है। फिलहाल आप सभी के लिए तलविंदर की आवाज़ में ये गाना, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपने

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: यो बॉयज, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, सुपर सॉन्ग।

यो गाइस, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है और वक्त हो चुका है नाइटमेयर का। नाइटमेयर मींस नॉट बुरे सपने, नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, मैं सपनों को डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर और हम लोग आप लोगों के साथ सारे सपनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, सपने में क्या होता है, सपने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट आज मैं जिस सपने की बात करने वाला हूँ वो है, सपने में कभी आप लोगों ने मछली देखी है? क्योंकि मैंने कल ही देखी, कल मीन्स कल रात को और आज सुबह बेसिकली देखी मैंने सपने में। और इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ खुशखबरी आने वाली है या फिर फाइनेंशियल गेन होने वाला है। तो क्या मेरे पास फाइनेंशियल गेन होने वाला है? पैसा ही पैसा होगा। चलिए खैर, बता दूँ आपको, शुभ संकेत माना जाता है मछली का दिखना। जैसे तैरती हुई मछली है, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, मछली पकड़ रहे हो अगर आप लोग, इसका मतलब है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और अगर मछली खाते हुए देख रहे हो तो फिर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ कुछ ना बैड साइंस भी होते हैं सपनों के, जैसे कि अगर आप मछली देख रहे हो और आपने देखा मरी हुई मछली है, तो गंदे पानी में मरी हुई मछली का मतलब है कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। या फिर अगर तड़पती हुई मछली देख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि परेशानी आने वाली है, तो उसकी चेतावनी है। तो सपने ना सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो बहुत कुछ होता है, वो बहुत कुछ बताता है, जीवन में आने वाली चीज़ों के बारे में संकेत भी देता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने जो सपना देखा होता है वो असलियत में हो जाती है चीज़ें। अब देखो, आपने सपने में देखा कि आप उड़ रहे हो, वो तो असलियत में नहीं होगा, बट हो सकता है आप प्लेन में बैठ के कहीं और जाने वाले हो। क्या पता आप लोगों की विदेश यात्रा के भोग लग रहे हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो सपने का कोई मतलब होता है और हम लोग इस टाइम हर रोज सपनों को डिकोड करते हैं। तो चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस आकर थोड़ा और भी बातें करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर लार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा है और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और बताऊं आपको, इसमें ना पूरे 30 प्लस प्लेयर्स हैं, मतलब 30 प्लस मींस 30 की एज के प्लस प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में। सिर्फ एक ही लड़का है जो 27 साल का है, वो है वेदरलैंड। वेदरलैंड भी नहीं है, इसका नाम वेदरआल्ड करके नाम है। और आपको बिलीव नहीं होगा, 198 पे ऑल आउट हो गई ये टीम। कैसे? मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा। तो कल से तो वैसे इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच शुरू होने वाले हैं, बट ऑस्ट्रेलियन टीम, इतनी बढ़िया टीम, उनके सारे प्लेयर आउट होते चले गए। और इसमें एक नया प्लेयर है महमूद करके बांग्लादेश में, उस लड़के ने 6 विकेट ले ली 17 ओवर डाल के, सिर्फ और सिर्फ 55 रन खाए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकेंड इनिंग की, मतलब जो बैटिंग करने के लिए बांग्लादेश आए, तो बांग्लादेश वालों के एक प्लेयर है हसन भाई, इस लड़के ने 101 रन बना दिए। और आज का मैच तो, आज का दिन तो खत्म हो चुका है, आप सभी को पता, टाइम भी हो चुका है वैसे तो, बट स्टिल इन लोगों ने कैसे ऑस्ट्रेलिया को इतनी पीछे कर दिया। और अभी 351 रन बना चुके हैं ये, 153 रन की लीड हासिल कर ली है। सेकेंड इनिंग में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी 153 की लीड हासिल करी, अब कल जब मैच शुरू होगा तो कहीं ना कहीं 200 रन की भी लीड हासिल कर लेते हैं, मान लेते हैं ये, तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छे से खेलना पड़ेगा, नहीं तो पूरे विश्व में थूतू थूतू हो जाएगी। तो चलिए, ये क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चितताओं ऐसे बोलते हैं, अनिश्चितताओं का खेल है वैसे तो। इंडिया वर्सेस श्रीलंका कल सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला है, तो उसमें कुछ अनिश्चितता का खेल देखने को ना मिले, यही मैं प्रे करता हूँ। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चलता हूँ, ब्रदर वी की आवाज में ये गाना आत्मा रामा, रेडियो महारानी 89.6 पर।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं, एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सम

संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा, मैं पढ़ता गया मैं पढ़ता गया। मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा, मैं शून्य बना मैं शांत बना। डिवोइस मैं देवांश बना, मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

आने वाले कुछ महीनों में कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो कि पर्दों पर आने वाली है, जो कि रिलीज होने वाली है और वो बम्पर कमाई कर जाएगी, जस्ट लाइक बॉर्डर 2, जस्ट लाइक धुरंधर 2। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और अभी मैं बात बोल रहा हूँ वो ये है कि बॉक्स ऑफिस पर अगला धुरंधर कौन बनेगा। टॉक्सिक मूवी आने वाली है, टॉक्सिक में है सुपरस्टार यश और फिर उसके अलावा

है, मुझे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा कि रणबीर कपूर ही है। खैर अभी जो फिल्मों की बात कर रहा हूँ तो उसमें दृश्यम पार्ट 3 भी है, और दृश्यम पार्ट 3 में क्या होने वाला है जरा सोचिए इसके बारे में। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दृश्यम के लिए। और इसी के साथ साथ बता दूँ आपको, बॉक्स ऑफिस पर जो अगला धुरंधर बन सकता है वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टॉक्सिक हो सकती है या फिर बंटवारा 1947 भी हो सकती है, क्योंकि इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। मगर इन सब के बाद बिल्कुल दिसंबर में क्रिसमस पे क्या होने वाला है। क्रिसमस आप लोगों को लग रहा हो ना बहुत दूर है, नहीं है दूर, अगस्त भी अभी तक दूर लग रहा था, अब देखो कितनी जल्दी अगस्त आ गया। खैर क्रिसमस पे आने वाली है फिल्म किंग खान की, किंग यानी कि शाहरुख खान की मूवी आने वाली है किंग, और उसके लिए भी बहुत सारे उनके जो फैन है वो वेट कर रहे हैं। और इसके साथ डूम्सडे आने वाली है इसी साल दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एवेंजर्स डूम्सडे ओवरशैडो कर जाएगी किंग को। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। नंबर है जी हमारा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ और हर्ष लिखारी की आवाज में है ये गाना बेबे बाबू। सुनिए इस गाने को, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

7:05 मेरी स्टूडियो क्लॉक में, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर आप लोगों ने सुना एड शीरन की आवाज में बढ़िया से गाना करण औजला के साथ। ये इन दोनों ने सिमेट्री बनाई थी

और सिमेट्री का हाल कुछ ऐसा है कि देखो हमारे फ़ोन में भी कुछ ना कुछ होता जा रहा है एंड फ़ोन की सिक्योरिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कोई भी अनऑथराइज्ड ऐप्स डाउनलोड नहीं करने। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है एंड मैं ऐसी बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल बातें करने का वक्त आ चुका है। एंड भाई सब लोग ना पता क्या करते हैं, देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होते। मैं किसी को अनपढ़ नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस। तो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस बेसिकली ऐसी चीज़ है जो कि अच्छे पढ़े लिखों को भी नहीं होता, क्योंकि देखो हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं टेक्नोलॉजी में जहाँ पर वो उसको नहीं यूज़ कर पाते, दे आर नॉट यूज़र फ्रेंडली या फिर कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारे फ़ोन में काफ़ी बार ऐसा होता है कि अनऑथराइज्ड ऐप्स भी डाउनलोड हो रखी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो आज आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना है और उनके मोबाइल फ़ोन्स में चेक करना है कि कोई अनऑथराइज्ड ऐप तो नहीं डाउनलोड हो रखी या फिर कोई ऐसी ऐप जो आपको लगता है ये क्यों है इनके फ़ोन में, तो उसको डिलीट कर दीजिए सबसे पहले। फिर उसके बाद उनका आप व्हाट्सएप भी चेक कर सकते हैं। देखो प्राइवेसी मैटर्स आई नो, बट व्हाट्सएप पे अननोन नंबर्स चेक कीजिए, नोन नंबर्स को मैसेज खोल के मत देखिएगा, अननोन नंबर्स चेक कीजिए कि उनकी तरफ से कोई एपीके फाइल तो नहीं आई है, क्योंकि ये एपीके फाइल्स के थ्रू आपके फ़ोन में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना चला रहा हूँ केके की आवाज़ में। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप, आरजे गौरव है आप सभी के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हो, सुबह भी हंसी है, शाम भी हंसी है, और ये म्यूजिक जो चल रहा है बैकग्राउंड में, ये तो बहुत ही ज्यादा वाला हंसी है तलविंदर की आवाज में। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। क्या हाल है? नहीं, ये सेगमेंट का नाम है क्या हाल है, और इसमें मैं वो बात करना चाहता हूँ जैसे काफी बार होता है ना कि आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं और वो इंसान वापस नहीं कर रहा है, तो जिससे पूछो क्या हाल है, अरे भाई

पैसे मेरे पास थे, अब लोगों के पास है, बस वापस आने का प्लान नहीं है। लोगों से पूछो क्या हाल है, मतलब जिसने पैसे दे रखे ना उस इंसान से जाके पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा बढ़िया है, बस मेरे पैसे मुझसे ज्यादा दूसरों के घर में खुश हैं। उसे पूछोगे फिर से कि क्या हाल है, वो बोलेगा सब ठीक है, बस जिसने उधार लिया था वो मुझे देख के ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मैंने उससे पैसे मांगे हो। ऐसा होता है ना काफी बार, आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हो, वो बोलता है भाई तुझे क्या जरूरत पड़ेगी, अरे तुझे क्या जरूरत पड़ेगी, क्या ऐसा सवाल है, मेरे पैसे हैं मुझे ही नहीं जरूरत पड़ेगी। और अगर उससे पूछ लो कि क्या हाल है, वो बोलता है भाई पैसे तो मेरे हैं लेकिन अब उस इंसान की लोकेशन अननोन है जिसको मैंने पैसे दिए थे। और अगर उनसे फिर से पूछ लो कि भाई क्या हाल है, तो वो बोलेगा पैसे दिया था उधार, अब लग रहा है अडॉप्शन कर दिया गया है, मतलब अडॉप्शन नहीं अबैंडन कर दिया गया, बेसिकली वर्ड का हेर फेर हो गया थोड़ा सा। अगर आप किसी इंसान से पूछोगे जिसने पैसे उधार दे रखे, उससे पूछोगे कि क्या हाल है, वो बोलेगा मैं तो फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, बस मेरे पैसे मेरे साथ स्टेबल नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने मुझसे पैसे लिए थे वो इंसान पैसे वापस करने को तैयार नहीं है। तो ये था आज का क्या हाल है। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगन होंगे जो लोगन में पैसे उधार दे रखे होंगे किसी और लोगन को, तो उन लोगों से पैसे वापस मांग लीजिए, क्योंकि वो इंसान ढीठ होते हैं, वो पैसे वापस करने को तैयार ही नहीं होंगे। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक खैरियत और पल पल देते।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

मौसम विभाग का कहना था कि आज बारिश होगी और वो बारिश आज हुई भी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। आज जो दोपहर में अंधेरा छाया था ना, वो तो मुझे ऐसा लग रहा था एक बार को अनस्टॉपेबल होने जा रहा है, ठीक इस गाने की तरह। डीनो जेम्स की आवाज में था ये गाना अनस्टॉपेबल। रेडियो का गौरव आरजे गौरव, बिल्कुल आरजे गौरव इन द हाउस। एंड जो मैं

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है, खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

ओए होए होए, क्या प्यारा वाला गाना था ये, मजा ऐसा ही आ गया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। आप सभी का स्वागत करता हूँ रेडियो महारानी 89.6 पर, और वक्त हो चुका है म्यूजिक डीकोड करने का। एंड म्यूजिक डीकोड करने की जब भी बात आती है ना, तो मुझे लगता है देखो यार, गाने को अच्छे से डीकोड ना करा जाए तो फिर मजा ही

ये जो गाना परदेसिया, पता आप लोगों को ये एल्बम साल 2010 में आने वाली थी, परदेसिया। ये गाना 2010 में आने वाला था, परम सुंदरी मूवी में ये गाना लिया गया, रोमांटिक गाना सचिन जिगर की आवाज़ में, मतलब बहुत ही कंपोज किया था सचिन जिगर ने, सोनू निगम की आवाज़ में था, उनके साथ कृष्ण कली साहा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और पता है आपको लिखा किसने, अमिताभ भट्टाचार्य ने। एंड मेलोडी ओल्ड स्कूल बॉलीवुड स्टाइल रोमांटिक डुओ, डुएट कह सकते हैं, डुओ कह लो, वो पुराने गाने याद दिला दिए। एक तो वो रोजा फिल्म का गाना था, सेम वैसे टाइप का फील दे रहा है, और बाला सुब्रमण्यम के जितने गाने थे उनकी आवाज़ में अगर ये गाना होता तो कितना अच्छा लगता ना, आपको बता दूँ। इमोशनल है, साथ में सॉफ्ट केमिस्ट्री है, और फिर मूवी के अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की एक केमिस्ट्री भी दिखा दी। आप लोगों ने इसके गाने की लाइन सुनी ढंग से, तो इस गाने में ना एक बहुत ही प्यारी सी लाइन आती है, उसका ये गाने की लाइन है, हम दोनों की जुदा है हस्तियाँ, जुदा थी हस्तियाँ। अगर मैं लिरिक्स में गाऊँ, देखो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा। हम दोनों की जुदा थी हस्तियाँ, हो किनारे बिन जैसे कश्तियाँ, आसान हो आगे सफर, तुम साथ मेरा चुन लो अगर। ये गाना की लाइन अमेजिंग है यार, मतलब दिल खुश हो गया मेरा ये गाना सुन के। तो ये गाना डिकोड किया मैंने आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर, मगर अब जो गाना चला रहा हूँ वो वीकेंड वाली वाइब तो जरूर देगा, तो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी।

0: आस है।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आज जब बारिश हुई उससे पहले वाला जो मौसम हुआ वो था मौसम देखने लायक। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और आरजे गौरव में सुनने लायक यानी कि आप लोगों के लिए खूब सारे गाने लेकर आ गया हूँ मैं। एंड आज जो दिन का मौसम था वो बड़ा ही औसम था। मौसम विभाग ने कल ही बता दिया था, मैंने भी कल ही आपको बता दिया था कि बारिश तो होगी ही होगी, बट अभी बारिश के बारे में बात नहीं करने आया हूँ मैं बात करने आया हूँ बारिश के आफ्टरमैथ्स की। क्योंकि जैसी बारिश होती है ना, फिर उसके बाद लोग अपनी सिविक सेंस भूल जाते हैं। जो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि कोई ना कोई होशियार होता है जो रॉन्ग साइड गाड़ी ले आता है अपनी, पता नहीं उनको किस बात की जल्दी है, पता नहीं कहाँ जाना है इतनी जल्दी निकल के। और पता है ये लोग ना काम में कभी जल्दी नहीं दिखाते, ये हमेशा सड़क पर ही जल्दबाजी दिखाते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें लोगों के सिविक सेंस की, तो उनकी वजह से ही, मतलब हम जैसे लोगों की वजह से, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, हम लोगों की वजह से ही नालियाँ जाम होती है। आपने क्या कभी चिप्स का पैकेट खा के रोड पे नहीं फेंका कि कोई नहीं देख रहा चलो फेंक देते हैं? क्या आपने कभी कोई पन्नी रोड पे नहीं फेंकी? अगर नहीं फेंकी तो वेल एंड गुड है, बट अगर फेंकी है तो आप भी मेरी तरह ही हैं, क्योंकि मैंने अननोइंगली बहुत बार ऐसा किया है, गिर गया हाथ से, फिर मैंने वापस उठाया भी नहीं उसको, ईगो क्लैश हो जाता ना कभी कभार, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरी तरफ से। और मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कूड़ा मत उठाइए बट फैलाइए भी मत, क्योंकि यही पन्नियां नालियां जाम करती हैं और फिर उसके बाद वाटर लॉगिंग हर जगह दिखाई देती है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना इस सावन के मौसम को देखते हुए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
5: अब शाम को चाहिए एंड बिग टेन।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

यो गाइस, रेडियो का गौरव व्यक्त करता है और वक्त हो चुका है नाइटमेयर का। नाइटमेयर मींस नॉट बुरे सपने नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, मैं सपनों को डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर और हम लोग आप लोगों के साथ सारे सपनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, सपने में क्या होता है, सपने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट आज मैं जिस सपने की बात करने वाला हूँ वो है, सपने में कभी आप लोगों ने मछली देखी है? मैंने कल ही देखी, कल मीन्स कल रात को और आज सुबह बेसिकली देखी मैंने सपने में। और इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ खुशखबरी आने वाली या फिर फाइनेंशियल गेन होने वाला है। तो क्या मेरे पास फाइनेंशियल गेन होने वाला है? पैसा ही पैसा होगा। चलिए खैर, बता दूँ आपको, शुभ संकेत माना जाता है मछली का दिखना। जैसे तैरती हुई मछली है, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, मछली पकड़ रहे हो अगर आप लोग, इसका मतलब है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और अगर मछली खाते हुए देख रहे हो तो फिर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ कुछ ना बैड साइंस भी होते हैं सपनों के, जैसे कि अगर आप मछली देख रहे हो और आपने देखा मरी हुई मछली है, तो गंदे पानी में मरी हुई मछली का मतलब है कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। या फिर अगर तड़पती हुई मछली देख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि परेशानी आने वाली है, तो उसकी चेतावनी है। तो सपने ना सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो बहुत कुछ होता है, वो बहुत कुछ बताता है, जीवन में आने वाली चीज़ों के बारे में संकेत भी देता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने जो सपना देखा होता है वो असलियत में हो जाती है चीज़ें। अब देखो, आपने सपने में देखा कि आप उड़ रहे हो, वो तो असलियत में नहीं होगा, बट हो सकता है आप प्लेन में बैठ के कहीं और जाने वाले हो, क्या पता आप लोगों की विदेश यात्रा की भोग लग रहे हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो सपने का कोई मतलब होता है और हम लोग इस टाइम हर रोज सपनों को डिकोड करते हैं। तो चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस आकर थोड़ा और भी बातें करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
2: जब शाम को चाहिए एंटिक

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: ला छड़ी दा।
1: इसी गाने के साथ जिम ब्रो आ गया है, मगर जिम ब्रो का दूसरा नाम भी है
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
1: तो जी रेडियो गौरव आप सभी के साथ है। एंड एक और बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, ये कि अभी वक्त हो चुका है जिम ब्रो का। अगर आप लोग जिम जाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं जाते हैं तो जाना शुरू कर दीजिए। अब मैं ऐसा बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जिम जाने की कोशिश तो करते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम लोग भी जिम ज्वाइन करेंगे, बट आउट ऑफ सम रीजंस वो लोग नहीं जा पाते। वो सोचते हैं कल ज्वाइन कर लेंगे, परसों ज्वाइन कर लेंगे। तो आज तो मैं आप सभी को मोटिवेट करने आया हूँ। देखो, आपकी जो ब्लड रिपोर्ट आएगी ना, उसका वेट मत कीजिए। आप लोग आज से ही जिम ज्वाइन कीजिए, या फिर जिम अगर नहीं भी जाते तो वर्कआउट ज़रूर कीजिए। जो हमारे पूर्वज लोग थे ना, वो लोग हमसे कई गुना ज़्यादा वर्कआउट किया करते थे। कैसे? वो इधर से उधर जाने के लिए, घर से दूर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल भी नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम साइकिल नहीं हुआ करती थी। वो पैदल पैदल जाते थे, और मैं बात कर रहा हूँ 1990s से पहले की, मतलब 50s से पहले की चलो बात कर लेते हैं, अंग्रेज़ों के टाइम की बात कर लेते हैं। उस टाइम तो बहुत ही किस्मत वाले लोगों के पास साइकिल या फिर घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, बग्गी चला करती थी, बसेस तो खैर थी ही नहीं। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग आज से ही वर्कआउट शुरू करने का एक प्रण ले लीजिए। भले ही 15 मिनट का वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, या फिर आप सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़िए, या फिर आप हो सके तो ब्रिस्क वॉक कीजिए, बट करना शुरू कीजिए। और जो भी इंसान रनिंग करने की सोच रहा है, उन लोगों को एक टिप देना चाहूँगा कि पहले दिन से ही रनिंग करना मत शुरू करना, धीरे धीरे आदत बनाओ। पहले चलो, फिर 50 मीटर जॉगिंग करो, फिर चलो, फिर 50 मीटर जॉगिंग करो, फिर ऐसे करते करते अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, तो आप लोग धीरे धीरे बहुत कुछ कर लोगे। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना चला रहा हूँ, बाय, नहीं नहीं मैं बाय नहीं बोल रहा हूँ, बाय इस गाने का नाम है, आदित्य भारद्वाज की आवाज़ में रेडियो महारानी पर।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

क्या आप लोगों को पता है जब पानी जमा हो जाता है तो क्या होता है, उसमें मच्छर पैदा होने लगते हैं। और आपको पता है रोज शाम को 5 से 9 रेडियो महारानी 89.6 पर कौन आता है? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी हाँ बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी के साथ फिर से हाजिर है। रोज शाम को 5 से 9 मंडे टू फ्राइडे आऊंगा मैं और अभी भी आपके साथ जुड़ा ही हुआ हूँ। खैर वक्त हो चुका मेरा यहाँ से जाने का, मगर जाने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि आज तो फ्राइडे है ब्रो, कोई तो पार्टी के प्लान्स होंगे और मौसम को देखने के बाद तो अच्छे से अच्छा इंसान जो रुकना भी चाहता है वो भी नहीं रुक पाएगा क्योंकि बारिश हुई ही ऐसी है। एंड फ्राइडे है तो देखो वक्त तो वैसे हो चुका मेरा यहाँ से जाने का, मगर इसके साथ मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों से। ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं और मेरी घड़ी में हो रहे हैं 8:48, आपकी घड़ी में भी इतना ही हो रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। खैर अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके घर के आसपास पानी जमा हो रखा होगा कहीं ना कहीं।

0: तो प्लीज देखो आज बारिश हुई अच्छी वाली, तो प्लीज आप उस पानी में पेट्रोल डाल दीजिए थोड़ा सा, एक ढक्कन एक चम्मच, और हो सके तो वो वाटर लॉगिंग वाला एरिया ना उसकी फोटो क्लिक करके एमसीएफ को जरूर भेजना, कंप्लेंट डालिए क्योंकि आवाज उठाएंगे तभी उस पर कार्रवाई होगी। तो चलिए इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं कौन हूँ, बिल्कुल रेडियो का गौरव ही मिलेगा आप लोगों से, और अभी लेता हूँ इजाजत। सो दिस वॉज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 एफएम, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सायोनारा, एंड सुनिए इस गाने को जिसका नाम है दिव्य दृष्टि। क्या है दिव्य दृष्टि, सुनिए एंजॉय कीजिए और वापस आएगी गीत विदेश को बाजिया, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
1: महादेव मैं हूँ बैरागी भोले, तेरी वजह से हूँ मैं प्रेमी, हूँ मैं पापी, हूँ मैं माल पी के मजे में, हूँ मैं नशे में हूँ।

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं, एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा मुझ पर

ज्ञान संसार का ना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अगस्त किसी के लिए हॉलिडे है, किसी के लिए सेलिब्रेशन, लेकिन हमारे सोल्जर्स के लिए ये भी एक ड्यूटी का दिन है। तो इस बार सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, एक खत भी लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें दीजिए और हम आपके जज्बात हमारे देश के हीरोज तक पहुंचाएंगे। आप ये खत हमें सबमिट कर सकते हैं रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम @RadioMaharani89.6। रेडियो महारानी 89.6 FM, दिल से देश के नाम।
1: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: देगी बिना फिल्टर
1: सच वाला रिव्यू,
0: यही है रिव्यू अड्डा
1: सिर्फ आरजे गीत के साथ।
2: हेलो एंड वेलकम, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। मैं हूँ आपके साथ गीत और लेकर आ गई हूँ शो रिव्यू अड्डा। वीकेंड का मतलब ये होता है थोड़ा सिनेमा, थोड़ा एंटरटेनमेंट और थोड़ी सी ऑनेस्ट बात कि भाई थिएटर में टिकट के पैसे लगाने चाहिए या नहीं। और आज की फिल्म कोई रैंडम रिलीज नहीं है, ऑलमोस्ट 19 साल बाद एक ऐसा कैरेक्टर स्क्रीन पर वापस आया है जिसके नाम के साथ ही पूरा इमोशन अटैच्ड है, शिवम पंडित। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अवर अपन 2007 की आवारापन ने रिलीज के टाइम शायद बॉक्स ऑफिस पर उतने बड़े नंबर नहीं बनाए थे, लेकिन इयर्स के साथ उसने एक कल्ट फॉलोइंग डेवलप की। उसकी स्टोरी, शिवम का पेन और सबसे इम्पोर्टेंट उसका म्यूजिक, ये सब लोगों के दिल में रह गया। और अब क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि सीक्वल कैसी है, क्वेश्चन ये है क्या 19 साल बाद शिवम पंडित का मैजिक स्टिल वर्क्स। इमरान हाशमी रिटर्न्स, दिशा पाटनी जॉइंस दिस न्यू चैप्टर, नितिन का कट टेक्स ओवर द डायरेक्टर्स चेयर और मेकर्स ने एक बार फिर एक्शन इमोशन रिवेंज और रिडम्पशन को मिक्स करने की कोशिश की है। तो आज के रिव्यू अड्डा में नो स्पॉइलर, नो अननेसेसरी हाइप, सिर्फ बात करेंगे कि आवर अपन 2 एक्चुअली डिलीवर करती है या सिर्फ नॉस्टैल्जिया के भरोसे चलती है। सो लेट्स गेट इनटू इट। आप सुन रहे हैं रिव्यू अड्डा, वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा। मैं हूं आपके साथ गीत, रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की, विदाउट स्पॉइलर ऑब्वियसली। आवर अपन टू का बिगेस्ट चैलेंज था कि ओरिजिनल फिल्म की इमोशनल लेगेसी को कंटिन्यू भी करना है और एग्जैक्टली वही कहानी दोबारा रिपीट भी नहीं करनी है, और फिल्म यही एक इंटरेस्टिंग रूट लेती है। इस बार शिवम की जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल लेयर है, एक चाइल्ड के साथ उसका रिलेशनशिप। इसी कनेक्शन के थ्रू स्टोरी सिर्फ रिवेंज या एक्शन तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि शिवम के कैरेक्टर को एक डिफरेंट इमोशनल स्पेस में ले जाती है। फिल्म की ओपनिंग पोर्शंस काफी इंगेजिंग है, शुरू से ही एक सीरियस सोशल इशू स्टोरी का पार्ट बन जाता है, और इसी बैकड्रॉप में शिवम की न्यू जर्नी बिल्ड होती है। लेकिन फिल्म सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन रिवेंज स्टोरी नहीं होती, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है मल्टीपल सब प्लॉट्स एंटर करते हैं कुछ, लेकिन कुछ जगह ऐसा फील होता है कि फिल्म थोड़ी अननेसेसरी डिटोर ले रही है। सो स्टोरी का बेसिक वर्डिक्ट, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, इमोशनल कोर स्ट्रांग है, बट स्क्रीन प्ले को थोड़ा टाइटर होने का फायदा मिल सकता था। तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है रिव्यू अड्डा।

मैं डॉक्टर गार्गी अग्रवाल हूँ. आई एम अ सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी एट अमृता हॉस्पिटल सेक्टर 88 फरीदाबाद. तो एज मोस्टली लोगों को पता है दैट अमृता हॉस्पिटल इज अ लार्ज फैसिलिटी, इज एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल एज सच ऑल्सो. एंड यहाँ पर हम कई ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी केसेस और गायनी के लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं और कई हाई रिस्क और कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी सक्सेसफुली पूरे किए हैं. डिलीवरी से डर फीमेल्स में बिल्कुल एक्सपेक्टेड और एक नॉर्मल फिनोमिना है. जैसे हम सब जानते हैं कि डिलीवरी भी एक मदर के लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस

एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, और किसी भी एक रूटीन लाइफ में भी कोई भी नया एक्सपीरियंस या बहुत बड़ा काम करने पर हमेशा हम सब में भी जो है एक डर की फीलिंग सबसे ज्यादा उभर के सामने आती है। और जब फीमेल की लाइफ में इतना बड़ा चेंज और परिवर्तन हो रहा होता है तो ये डर काफी नॉर्मल है। तो डिलीवरी से डर जो है इस चीज को समझना कि ये भी एक नेचुरल फीलिंग है, और इसको ये सोचना कि इससे घबराने की बजाय आप अपने अगर मिथ्स क्लियर रखेंगे, अपने दिमाग में क्लैरिटी रखेंगे तो जरूर जो है, और ऑफ कोर्स सेफ्टी ऑप्शंस अपने सारे साथ रखेंगे, तो जो हमारा सेफ एक एंड पॉइंट है दैट इज सेफ एंड कंफर्टेबल डिलीवरी, वो फीमेल्स अचीव कर पाएंगी कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन। तो डेफिनेटली कई बार हम ये देखते हैं फीमेल्स में कि नॉर्मल डिलीवरी से डर लगता है, या उनके केसेस में कई बार नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल भी नहीं होती है, बट फैमिली का प्रेशर देखते हुए उनको ये लगता है कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रही है तो कुछ कमजोरी हो रही है या उनकी तरफ से कुछ चीजें गलत हो रही हैं। तो फीमेल्स को ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये कोई कंपटीशन नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन, इन दोनों का एक ही मकसद है, एक ही एंड पॉइंट है, एक ही आउटकम है, वो है सेफ मदर और सेफ बेबी। तो इन दोनों को कंपटीशन की तरह देखने की बजाय ये देखना ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में किस पेशेंट के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा सही है। और इसी की हेल्प के लिए आपके डॉक्टर्स और मरीज के जो क्लिनिशियंस होते हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह एक तरीके से मेडिकल एंटिटीज हैं, और पेशेंट की हेल्थ, बेबी की हेल्थ और उस समय की सिचुएशन को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। तो ये चीज केस टू केस और पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल रहती है। डॉक्टर कॉलिंग।

0: कभी भी, तो आप हमको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गया तो?
2: नहीं, क्यों?

SDQ. Cinema ka capsule. सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 9.6 एफएम, जहाँ मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट हॉल में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे सेंटर, कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स, मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बिट्रेयल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्ट प्लेयर हूँ, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे ज्यादा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बनाता है। एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

0: बजे गीत के साथ।
1: वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। अब बात करते हैं डायरेक्टर नितिन कक्कड़ की। उनके सामने चैलेंज सिंपल नहीं था। आपके पास एक कल्ट फिल्म का सीक्वल है, ऑडियंस ओरिजिनल को इमोशनली याद करती है, शिवम पंडित एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर है और कंपैरिजन जो है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो नितिन कक्कड़ का अप्रोच ये रहा कि वो ओरिजिनल को कॉपी करने की बजाय उसकी इमोशनल डीएनए को कंटिन्यू करते हैं। फिल्म में कुछ सीक्वेंसेस स्पेशली नोटिसेबल हैं, ओपनिंग एक्शन पोर्शन, बैंकॉक स्ट्रीट का कार चेज, कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज और क्लाइमेक्स की स्टेजिंग। और एक स्मार्ट डिसीजन ये भी है कि ओरिजिनल फिल्म का कुछ रेफरेंसेस और मोमेंट्स को ऐसे इंटीग्रेट किया गया है कि नॉस्टैल्जिया फोर्स नहीं लगता। आपको बार बार ये रिमाइंड नहीं कराया जाता कि देखो हम सीक्वल है। इंस्टेड फिल्म ओकेजनली ओरिजिनल की याद दिलाती है एंड दैट वर्क्स। हाँ, मिडिल पोर्शंस में सब प्लॉट्स की वजह से पेस थोड़ा सा लूज फील हो सकता है, बट ओवरऑल डायरेक्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइटली बिल्कुल नहीं लिया है, तो भाई डायरेक्टर के फुल मार्क्स तो बनते हैं। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है रिव्यू अड्डा।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा जगीत के साथ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। अब थोड़ा टेक्निकल हम बात कर लेते हैं राइटिंग और स्क्रीन प्ले की। बिलाल सिद्दीकी और विशेष भट्ट की राइटिंग का सबसे स्ट्रांग पॉइंट यही है कि फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर कभी कम्प्लीटली लूज नहीं होते, चाहे एक्शन हो, इमोशन हो, रिलेशनशिप हो या सोशल इशू। स्टोरी बार बार शिवम पर रिटर्न करती है और दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज सीक्वल में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि नए कैरेक्टर्स और नए कॉन्फ्लिक्ट्स इतने एक्सपेंड हो जाएं कि ओरिजिनल कैरेक्टर साइड में चला जाए। यहाँ राइटर ने उस बैलेंस को मोस्टली मेंटेन किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। फिल्म में कुछ सब प्लॉट्स ऐसे हैं जो इंटरेस्टिंग तो हैं, बट मेन नैरेटिव के लिए ऑब्वियसली एसेंशियल फील नहीं होते। रिजल्ट, फर्स्ट हाफ और मेजर इमोशनल सीक्वेंसेस का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग रहता है, बट मिडिल पोर्शन में पेसिंग कभी कभी थोड़ी सी अनइवन हो जाती है, तो राइटिंग को मार्क्स मिलते हैं कैरेक्टराइजेशन और इमोशनल बीट्स के लिए, बट टाइटर स्क्रीन प्ले फिल्म को और ज्यादा पावरफुल बना सकते थे। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है रिव्यू अड्डा।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

बैक टू रिव्यू अड्डा। मैं हूँ गीत, रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आवर अपन टू सिर्फ इमोशनल ड्रामा है, नो, फिल्म में एक्शन भी प्रॉपरली प्रेजेंट है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्शन सीक्वेंस सिर्फ हीरो एंट्री, मार धार, नेक्स्ट सीन टाइप नहीं रखे गए हैं। ओपनिंग का बैंकॉक कार चेस पर्टिकुलरली अटेंशन ग्रैब करता है। एक्शन का ट्रीटमेंट फिल्म के डार्कर टोन के साथ मैच करता है। शिवम का कैरेक्टर भी एक सुपर ह्यूमन एक्शन हीरो की तरह बिहेव नहीं करता। उसके एक्शन में फिजिकैलिटी के साथ इमोशनल एंगर भी फील होता है और ये कॉम्बिनेशन फिल्म के टोन को मेंटेन करता है। ऑफ कोर्स कुछ सीक्वेंसेस आपको प्योर मास एंटरटेनमेंट वाली सेटिस्फेक्शन देंगे, व्हाइल सम मे फील फैमिलियर, बट इफ यू आर एंटरिंग द थिएटर एक्सपेक्ट लेस इमोशन, फिल्म उस एक्सपेक्टेशन को लार्जली अंडरस्टैंड करती है। वक्त है रिव्यू अड्डा।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

0: वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा आज गीत के साथ अब बात करते हैं सपोर्टिंग परफॉर्मेंस की। सबसे पहले दिशा पाटनी। दिशा का रोल सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं रखा गया, उनके कैरेक्टर को इमोशनल वेट भी दिया गया है और उनकी परफॉर्मेंस का टोन भी कंपैरेटिवली रीएस्टेम किया गया है। उनकी और इमरान की स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म के इमोशनल पोर्शंस में काम करती है। देन कम्स शबाना आजमी एंड ऑनेस्टली ये उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिनके स्क्रीन पर आते ही स्क्रीन का वेट बढ़ जाता है। अर्ली रिव्यूज का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि शबाना आजमी को स्क्रीन टाइम मिलता तो है लेकिन कुछ पावरफुल मोमेंट्स भी मिल सकते थे। पूरन गुजर विलन के रोल में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ऑल्दो कुछ मोमेंट में परफॉर्मेंस स्लाइटली ओवर द टॉप फील हो सकती थी। अनिरुद्ध रावल, सुवेंदर विक्की और बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी फिल्म को रिक्वायर्ड ग्राउंडिंग देती है। ओवरऑल कास्ट में कोई मेजर वीक लिंक नहीं लग रहा है। अभी फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है रिव्यू अड्डा।
1: Carnival, the last ride, King.

टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: ट्रीटमेंट के साथ ब्रिंग बैक किया गया है। न्यू कॉम्पोजिशन में मिथुन और अमान मलिक का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ओरिजिनल से कंपैरिजन तो होगा ही ना, बिकॉज नॉस्टैल्जिया का लेवल ही अलग है। न्यू म्यूजिक अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में कोशिश करता है, लेकिन ओरिजिनल साउंड ट्रैक के इमोशनल बेंचमार्क को मैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था। स्टिल म्यूजिक फिल्म की एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करता है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर को डेफिनेटली बूस्ट करता है, तो म्यूजिक भी एकदम बढ़िया है। तो वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है रिव्यू अड्डा।
1: A plate is a myth when the rent is due, but hunger is home. It hurts straight in the ribs when I suffer alone. My stomach be yelling louder than my prayers at night. My mind telling me to quit. I might take

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा आज अगीत के साथ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आवारापन 2 को एंजॉय करने के लिए आपको आवारापन देखनी जरूरी है? जरूरी नहीं है भाई, फिल्म अपनी न्यू स्टोरी और न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ चलती है, बट अगर आपने ओरिजिनल देखी है तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने फर्स्ट फिल्म के कुछ मोमेंट्स और इमोशनल रेफरेंसेस को सीक्वल में क्लेवरली वेपन किया है। और ये रेफरेंसेस सिर्फ एस्टर एग्स जैसे नहीं लगते, दे हेल्प एस्टैब्लिश्ड अ ब्रिज बिटवीन ओल्ड शिवम एंड द शिवम वी सी टुडे। यही रीजन है कि ओरिजिनल फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया फैक्टर काफी स्ट्रांग हो सकता है, बट हियर्स द कैच, अगर सीक्वल बार बार सिर्फ पुरानी फिल्म की याद दिलाता रहे तो प्रॉब्लम होती ना भाई। फॉर्चुनेटली आवारापन 2 अपनी सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करती है, सो नॉस्टैल्जिया सपोर्टिंग इनग्रीडियंट है, पूरा मील नहीं। तो वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है रिव्यू अड्डा।

0: देगी बिना फिल्टर
1: सच वाला रिव्यू
0: ही है रिव्यू अड्डा
1: सिर्फ आरजे गीत के साथ।
0: वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। चलिए एक क्विक बट ऑनेस्टली चेक लिस्ट करते हैं। व्हाट वर्क्स? नंबर वन, इमरान हाशमी, शिवम पंडित का कैरेक्टर अब भी फिल्म का हार्ट है। नंबर टू, इमोशन, फिल्म सिर्फ रिवेंज को सेल नहीं करती, रिलेशनशिप्स और रिडेम्पशंस को भी नैरेट का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया गया है। नंबर थ्री, एक्शन, स्पेशली ओपनिंग पोर्शंस और मेजर एक्शन मोमेंट्स फिल्म को प्रॉपर थियोरेटिकल एनर्जी देते हैं। नंबर फोर, नॉस्टैल्जिया, ओरिजिनल आवारापन के फैंस के लिए कॉल बैक्स और म्यूजिकल रेफरेंसेस डेफिनेटली काम करते हैं। और नंबर फाइव, म्यूजिक, न्यू एल्बम को ओरिजिनल के शेडो से बाहर निकलना मुश्किल था, बट फिल्म की मूड सेटिंग में म्यूजिक इफेक्टिव है। अब वीकनेसेस, मल्टीपल सब प्लॉट्स की वजह से फिल्म कभी कभी अपनी कोर स्टोरी से थोड़ा सा दूर चली जाती है। और ऑब्वियस कंपैरिजन विद द ओरिजिनल, बिकॉज लेट्स फेस इट, 2007 का आवारापन एक इमोशनल बेंचमार्क क्रिएट कर चुका है, बट फिल्म फिर भी अमेजिंग है। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है रिव्यू अड्डा।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा आरजे गीत के साथ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। अब वो सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शुड यू वॉच आवर अपन टू इन थिएटर्स। अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं, देन यस। अगर आपने ओरिजिनल आवर अपन को कल स्टेटस तक फॉलो किया है, देन डेफिनेटली यस। अगर आपको डार्क एक्शन ड्रामास पसंद है जहां वॉयलेंस के साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी हो, देन अगेन यस। और अगर आप एक प्योर ब्रेनलेस एक्शन एंटरटेनर की एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन एडजस्ट करना होगा, बिकॉज फिल्म एक्शन के साथ इमोशनल बैगेज भी कैरी करती है। इट्स नॉट परफेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट, फिल्म शिवम पंडित को सिर्फ नॉस्टैल्जिया कैरेक्टर बनाकर नहीं छोड़ती, उसकी जर्नी को एक न्यू इमोशनल कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करती है। तो ये फिल्म जरूर बनती है थिएटर में आपको देखने के लिए। फिलहाल वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगा।

तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है। इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

रेडियो महारानी

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। तो फाइनली टाइम फॉर द बिग क्वेश्चन, आवारापन टू कैसी है? सिंपल आंसर, इट्स नॉट फ्लोलेस बट इट इज द हार्ट। फिल्म का बिगेस्ट विनर ऑब्वियसली इमरान हाशमी एज शिवम पंडित रहा है। 19 साल बाद कैरेक्टर की रिटर्न सिर्फ कास्टिंग स्टंट नहीं लगती, उसके इमोशन, पेन और रिलेशनशिप को एक फ्रेश कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। दिशा पाटनी डिलीवर्स एन इमोशनल परफॉर्मेंस, सपोर्टिंग कास्ट सॉलिड है, एक्शन सीक्वेंसेस थिएट्रिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं और म्यूजिक नॉस्टैल्जिया को ब्यूटीफुली एक्टिवेट करता है। हाँ, स्क्रीन प्ले को मिडिल पोर्शन में थोड़ा टाइटर किया जा सकता था, कुछ सब प्लॉट फिल्म को अननेसेसरीली स्केच करते हैं, बट व्हेन द फिल्म हिट्स इट्स इमोशनल बीट इट वर्क्स। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आवर

अपन टू ओरिजिनल को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करती। इट ट्राइज टू एड अनदर चैप्टर टू शिवम पंडित स्टोरी। सो रिव्यू अड्डा वर्डिक्ट। अगर आपको इमरान हाशमी का इंटेंस अवतार पसंद है, अगर आवर अपन आपके लिए सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक मेमोरी है, अगर आप थिएटर में एक्शन के साथ इमोशन भी चाहते हैं, देन आवर अपन टू डिजर्व अ वॉच। और हाँ, शिवम पंडित वापस आया है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आवर अपन का मैजिक एग्जैक्टली रिपीट हुआ है, नहीं, क्वेश्चन ये है क्या 19 साल बाद शिवम के दर्द में वही आवाज है। मेरे लिए काफी हद तक यस। मैं हूँ गीत और ये था रिव्यू अड्डा रेडियो महारानी पर। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए और फिल्में

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है, क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है लेकिन होती क्यों है। देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना। बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे, और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलसे भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिडर क्या रहा है, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खड़े सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

revenons, please.

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एनर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। गुम सुम, गुम सुम, गुम।

Hi, I am Dr. Shweta Mendiratta. मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 फरीदाबाद से आज आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रादर आई वुड से एक अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक यानी कि मेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी पर। मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसके बारे में शायद एक इंसान खुद ही नहीं जान पाता कि उसको ये प्रॉब्लम है या उसके साथ ये नेचुरल हो रहा है या ये फ्लो के साथ चलता रहता है जब तक कि उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम की बढ़ नहीं जाती है। आई फील फिजिकल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमोशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो फिजिकल और इमोशनल पार्ट है हेल्थ का वो आज की डेट में काफी हद तक कवर हो गया, बिकॉज आजकल चाहे हमारी मदर इन लॉज है या हमारे फ्रेंड्स हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एजुकेशन बीइंग पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, हम लोगों के ये सब केयर हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमने अगर किसी फीमेल को इमोशनल केयर दे दी तो शी मस्ट बी डूइंग वेल, क्योंकि हम उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए करा रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अटमोस्ट केयर टू अ फीमेल, वो फीमेल हो सकता है कि कुछ कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो जो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। शुरू में तो जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के आगे अचानक से रोने लग जाती है, तो हस्बैंड को ये लगता है कहीं उसे अपनी मम्मा की याद तो नहीं आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से घर में किसी पे भी चिल्ला देती है, तो उन्हें लगता है अच्छा इसने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज को उठा के ऐसे रख देगी।

या यू नो उसको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को खुद को जो फीमेल है उसको पता नहीं चलता है, तो ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये सब नॉर्मल हो रहा है, घर के लोगों को भी ये नॉर्मल लगता है। डेफिनेटली यस, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो इस तरीके से होते हैं कि वो रोल प्ले करते हैं, तो आपके ये मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैं भी पेशेंट को कहती हूँ कोई बात नहीं, बट अगर ये चीज डेली होने लगे या एक ही दिन में बार बार होने लगे कि एक औरत रोती ही जा रही है लगातार, आपने चुप कराया, आप आइसक्रीम ले गए, आप चॉकलेट लाने ले गए, आप उसको घुमाने ले गए, उसके बावजूद भी अगर ये चीज हो रही है देन डेफिनेटली ये चीज नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक।

और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है, और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना, यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए, जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां। 89.6 रेडियो महारानी। कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का 3रा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
2: चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़कर के मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी सांस हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे। यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर। सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या